सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।

FM ब्रांड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज बुधवार है, शक सवम 1948 की आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा

आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 6 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालताल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी।

0: उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का चिंतन। चिंतन का विषय है सत्य शोधक।

सत्य वो है जो शाश्वत है, सार्वभौमिक है, अपरिवर्तनशील है और जिसमें सभी का कल्याण है। जो व्यक्ति कल्याण की भावना से प्रतिबद्ध है वही सत्य बोल सकता है, वही सत्य शोधक है। वर्तमान, भूत और भविष्य की प्रत्येक अवस्था में सत्य सनातन है, निश्चल, पवित्र और आनंददायक है। हम मनुष्यों को व्यावहारिक जगत में रहते हुए सत्य शोधक होना चाहिए। इसके लिए सत्य के असीम सौंदर्य और इसके महत्व को समझते हुए हमें अपने दैनिक लोक व्यवहार में विवेक के प्रकाश को आत्मसात करना होगा। हमारे अंतस का अनुभव सत्य है, ये चेतना से भरपूर है, ये शांति और आनंद देता है। बाह्य सुख सुविधाएं अंतस को आनंदित नहीं कर सकती, क्योंकि परम आनंद तो आत्मा के ज्ञान से मिलता है और आत्मा चेतना का प्रकाश हमारे अंतस या अंतःकरण को पावन करती है, क्योंकि इससे अज्ञान दूर होता है, परम सत्य का साक्षात्कार होता है। आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप ही हमारा परम लक्ष्य है। मन, वाणी और कर्म से सत्य का साधक अपने अभिमान, अज्ञान की आहुति देकर अपनी आत्मा को सत्य के प्रकाश से उजागर कर देता है। सत्य का शोधक संसार के दुर्गुणों को ध्वस्त करते हुए कदम से कदम बढ़ाकर नई सामाजिक संरचना और नए युग का निर्माता बनता है। आइए आज सुबह की शुरुआत सत्य के शोधक बनकर समाज को नई दिशा देने के शुभ प्रयास से करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं वंदना।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत के अंतर्गत वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार है सतीश भाटिया।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगर वासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिचय गीत।

वही श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस कांड का आज का प्रसंग। संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 11:30 पर और रात्रि 10:00 से 11:00 तक।

0: आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल को आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं किसान श्रोताओं का अपना कार्यक्रम खेती में बात।
1: खेती की बात कार्यक्रम हम बतावरा सब भाइयों में सौराडियो राजी भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आज आप हवा हवा में बात करूंगा। कृषि में गोबर खाद में हम महत्व है, तो किसान भाइयों खेती में गोबर में खाद घनों उपयोगी है। ये इन खास महत्व भी है क्योंकि आ मिट्टी की गुणवत्ता, जल धारण क्षमता में वायु संचार में भी उदार है, जेने थे कि फसल की पैदावार भी बढ़े है। आ लाभकारी सूक्ष्म जीवों में भी बढ़ावो अले है, वे पौधे में आवश्यक तत्वों में भी बढ़ावो अले है। सबसे की मोटी बात के आ मिट्टी में कटाव ने कम करवा में भी मदद करे है। किसान भाइयों, मिट्टी हारो भी लाभ नी बात करो तो आ जैविक पदार्थ ने बढ़ावो आले। गोबर नी खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी वधावे है, जेने थे कि मिट्टी नी उर्वरकता में संरचना में भी उदार थाय है। जल धारण क्षमता में आ मिट्टी नी जल सोखवा में धारण करवानी क्षमता वधारे है, वे पानी में बचत करवा में भी सहायक है। किसान भाइयों, पौधों हारो लाभ नी बात करो तो आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में प्रदान भी करे है। जड़ों ना विकास में भी आ मदद करे, ने इन्हें हाथे आप पौधों ना संतुलित विकास में भी सुनिश्चित करे है। किसान भाइयों, गोबर नी खाद ना बीजा भी घना अन्य लाभ हैं, जिनके आ जैविक गतिविधियों में मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करे, वे इन्हें हते इन्हें स्थिर करवा में भी मदद करे है। गोबर नी खाद उपज में भी वृद्धि आले है, क्योंकि गोबर नी खाद ना उपयोग करवा थे कि फसल नी उपज में भी वृद्धि थाय, ने इन्हें थी कि किसानों ने अपनी आमदनी भी वधे है, ने इन्हें थी कि किसान भी अपना समृद्ध थी सके। किसान भाइयों, आ यूरिया ने डीएपी जीवी रासायनिक खादों की निर्भरता ने भी कम करे है, क्योंकि किसान भाइयों आज के युग में रासायनिक खातर ने जे लागत लागे है, इन्हें देखी भी किसान भाइयों ने आर्थिक नुकसान उठावे पड़े, तो आ इन्होंने निर्भरता ने भी कम करे। तो खास बात तो आ ही है कि आप पर्यावरण में भी कम नुकसान पहुंचावे, तो इन्हें हर भी आ बेहतर है। किसान भाइयों, गाय में गोबर मूत्र पौधों की वृद्धि हारू आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे है। खेतर में गोबर खाद नाखवानो सही समय फसल ने कटाई में बुआई ना मौसम पर निर्भर करे है। विशेष करी में तैयार गोबर नी खाद फसल कटाई थकी 3 या 4 हफ्ता में बुआई थकी ठीक पहल नाखवो जुए। तो किसान भाइयों, आज आ खेती बात कार्यक्रम में समय पूरो थी रो है। आज तो वालजी भाई ने आज्ञा लो, कल सोरा ऊपर फिर नवी जानकारी हाथे मलंगा। ए आवजू राम राम राम राम।
0: अभी हमारे किसान श्रोता सुन रहे थे खेती की जानकारी कार्यक्रम खेती में बात के अंतर्गत। इसी के साथ ही कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आदिवासी लोक संगीत। आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चुन्नीलाल वसादी कलाकारों की आवाज में गए कुछ लोकगीत।

उस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का नया ही चैनल है FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पूर्वा वोरा से वार्ता। वार्ता का विषय है साइबर अपराध और हमारी सुरक्षा। आज इंटरनेट के द्वारा अनगिनत कार्य किए जाते हैं, जैसे ऑफिस के कार्य, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, रेलवे टिकट बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट और भी अन्य उपयोग किए जाते हैं। ऐसे में इंटरनेट का उपयोग कुछ लोग गलत और अवैध कार्यों के लिए करते हैं। इसमें अपराधी किसी व्यक्ति के कंप्यूटर नेटवर्क को बेकार ट्रैफिक और मैसेज से भर देते हैं। उनका मकसद सिर्फ व्यक्ति, किसी संगठन या सरकार को नुकसान पहुंचाना होता है। साइबर अपराध के कई उदाहरण हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोग इसे पैसे कमाने का एक आसान तरीका मानते हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, आंकड़ों के मुताबिक उनकी आयु तकरीबन 18 से 30 साल तक की है। अब हम जानते हैं साइबर अपराध के प्रकार के बारे में। साइबर अपराध में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर

ब्लॉकिंग सिस्टम को नष्ट करने के लिए वायरस जैसे मेलवेयर बनाना या भेजना या फिर पैसे कमाने के लिए डेटा चोरी करना आदि शामिल है। इनमें से मुख्य इस प्रकार से हैं। पहला बात करेंगे हम हैकिंग के बारे में। इसमें किसी के कंप्यूटर के डेटा को बिना अनुमति के गैर कानूनी ढंग से उपयोग किया जाता है। हैकर्स घुसपैठ से किसी के कंप्यूटर सिस्टम की हानि पहुंचाते हैं। यह एक बड़ा अपराध है। अब इसके बारे में हम इसके बाद दूसरी है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग के अंदर अपराधी किसी व्यक्ति की जानकारी उसके बारे में गैर कानूनी ढंग से निकाल लेते हैं और उसे मैसेज या कॉल करके परेशान करते हैं। इसमें अपराधी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर

अपराधी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाना। तीसरा है पहचान की चोरी। आए दिन इंटरनेट पर कई लोगों के डेटा चोरी हो जाते हैं और कुछ लोगों की बैंक संबंधित जानकारी चोरी हो जाती है, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता है। ऐसे नुकसान से कई बार ये भी सामने आया है, वो देखने में आया है कि लोगों का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है या उनकी पूरी जमा पूंजी चोरी में चली जाती है। चौथा है वित्तीय अपराध। हैकिंग करके अपराधी लोगों के पैसे चुराते हैं। इस प्रकार वे कंपनियों का डेटा भी चुराते हैं और ऐसी कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीजों को वो आसानी से अपने तक समेट के रखने की उसमें वो ऐसी सभी चीजों को पूरे सभी सार्वजनिक कर देते हैं और यह वित्तीय अपराध के अंतर्गत आता है। अगला वायरस द्वारा लोगों की जानकारी पर हमला। साइबर अपराध में वायरस अटैक सबसे बड़ी समस्या है। यह एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में मौजूद सारी जानकारी को नष्ट कर देता है। इसमें किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर को दूसरे के सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद में उसकी सभी प्रकार की जानकारी जो उसके कंप्यूटर में मौजूद है वो सभी वो हैकर्स आसानी से अपने पास ले सकता है। अगला है फिशिंग। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति की जरूरी जानकारी निकाल ली जाती है। इसमें झूठे वेबसाइट या ईमेल भेजकर व्यक्ति की जानकारी चुरा ली जाती है। ऐसे में लोगों को अनजान स्पैम मेल में किसी लिंक को क्लिक करने से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसा मेल आए जो आपको कहीं से भी संदिग्ध लग रहा हो, तो ऐसे मेल को या ऐसे मैसेज का आप किसी भी तरीके से वापस उनका बदले में कोई जवाब न दें या उन्हें क्लिक करके खोलने की गलती न करें। अगला हम बात करते हैं पायरेसी। पायरेसी में अपराधी डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, जिसके कारण भी काफी नुकसान होता है और उसकी वजह से वो उसी के डुप्लीकेट फोटो या उसके उससे वो पूरे डेटा को आसानी से अपने पास में ले लेता है, जो कि एक गलत चीज है। इसके बाद में सिस्टम पर अटैक। साइबर अपराध कंप्यूटर के सिस्टम को क्षति पहुंचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, जिसे मालवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अब ये तो हुई बात इसके प्रकार की, अब हम बात करते हैं इस अपराध से बचाव के उपाय। कंप्यूटर हैकर्स से कंप्यूटर को बचाने के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपनी वित्तीय या बैंक संबंधी डिटेल किसी से साझा नहीं करना चाहिए और शॉपिंग संबंधित कार्य सुरक्षित वेबसाइटों से ही करनी चाहिए। यूजर्स को एक अच्छा पासवर्ड चयन करना चाहिए, जिससे हैकर्स किसी की मेल आईडी हैक न कर पाए। अभिभावकों को अपने बच्चों को सीमित मात्रा में ही इंटरनेट का इस्तेमाल करने देना चाहिए। आजकल देखने में आया है कि बच्चों का मोबाइल पर इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। वो आए दिन कुछ न कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। यह ही एक फ्रॉड का माध्यम बन चुका है। आसानी से किसी को भी इस तरीके से जाल में फंसा लेते हैं हैकर्स अपने, और फिर उसके बाद में वो उनकी पूरी जमा पूंजी को कुछ ही चंद सेकंड के अंदर वो पूरी बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। सोशल मीडिया वेबसाइटों के पासवर्ड व सेटिंग्स को सही से रखना चाहिए और अपनी निजी जानकारियों को शेयर करने से बचना चाहिए। वित्तीय लेनदेन में सार्वजनिक बैंक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे निजी जानकारी चोरी होने का भय रहता है और किसी भी अज्ञात लिंक को खोलने से बचना चाहिए। कभी आपने ये चीज अगर गौर करी हो कि आजकल ये आम हो चुका है, कहीं पर भी आप शॉपिंग मॉल में या किसी बड़े स्टोर पर, वहां पर आपको वाईफाई फ्री में प्रदान किया जाता है। इस वाईफाई को यूज में लेते हुए भी, इसका इस्तेमाल करते हुए भी आप बहुत सावधान बढ़ते। कोई अन्य अगर आपको शो कर रहा हो या आपको अपने मोबाइल में दिखाई दे, तो उसका इस्तेमाल ना करें, उस पर क्लिक ना करें। साइबर अपराध से केवल व्यक्ति नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत भयंकर खतरा है। यह व्यक्ति, संस्थान, यहाँ तक कि सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें न केवल व्यक्तिगत जानकारी बल्कि राष्ट्रीय जानकारियां भी चोरी हो जाती है,

0: साइबर अपराध को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है ताकि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी सतर्कता के साथ करें। हमेशा सोशल मीडिया इत्यादि के पासवर्ड और सेटिंग को सही रखें व हमेशा सतर्क रहें। हमेशा यह ध्यान में रखें कि संदेश कहां से आया है, उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करें। इंटरनेट का उपयोग सिर्फ ज्ञान विकसित करने के लिए करना चाहिए, न कि गलत चीजों के लिए। साइबर सुरक्षा सिस्टम नेटवर्क प्रोग्राम डिवाइस और डेटा को साइबर हमलों से बचाने के लिए प्रौद्योगिकों प्रक्रियाओं और नियंत्रण का अनुप्रयोग है। इसका उद्देश्य साइबर हमलों के जोखिम को कम करने और सिस्टम नेटवर्क व प्रौद्योगिकियों के अनाधिकृत शोषण से रक्षा करना है। अब हम बात करेंगे इससे बचने के कुछ तरीकों की। जैसे आप अपने मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, हर खाते के लिए अलग पासवर्ड व उपयोगकर्ता नाम संयोजन बनाएं, कमजोर पासवर्ड न बनाएं। दूसरा है सोशल मीडिया को निजी रखें। आपके सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पर ऑनलाइन पोस्ट करते वक्त सावधानी बरतें। तीसरा है अपने संग्रहण डेटा को सुरक्षित रखें। अगला है ऑनलाइन अपनी पहचान की सुरक्षा करना। किसी की भी व्यक्तिगत आईडी देते हुए पहले उसकी पहचान सुनिश्चित कर लें। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करते समय आपकी गोपनीयता सेटिंग्स को अनुमति देना भी शामिल है।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पूर्वा बोरा से वार्ता। वार्ता का विषय था साइबर अपराध और हमारी सुरक्षा। इसी के साथ कार्यक्रम बताई नहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

देशी प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं, मैं आपकी रेडियो साथी पूजा नारायणिया। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले गीत अधिकार फिल्म का। आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत है। गीत के बोल लिखे हैं रमेश पंत ने और आर डी बर्मन का संगीत है।

0: आगे भी प्यारे
1: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
3: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम है राही प्यार की इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म अंदाज से आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के लिखे बोल और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: भोली भाली है,
1: पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं।
0: मम्मी तेरी अच्छी है, कितनी भोली भाली है।

voir.

0: बाप रे।
1: कल मैंने देखी अजब हसीना, प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है दीना, धक धक धक। बात वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों ओ पापा पापा से,
0: हाय मर जाऊं।
1: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
0: क्यों नहीं
1: दिल पे उसने जो हाथ रखा, आ गया आराम।

राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर मजदूर सुल्तानपुरी के बोलो को आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना बुढ़ा मिल गया इस फिल्म से। कार्यक्रम हम है राही प्यार के में अब है एक अंतराल का वक्त।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कारवां फिल्म का गीत। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत आरजी बर्मन का।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर आनंद बख्शी के बोल। इस गीत को गाया है किशोर कुमार लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी।

0: 看吧。
1: 啊哈，村长，谁家里太大？
0: 啊哈，村长，啊，真的好吧？
1: 啊哈，村长。

और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जाने अनजाने फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। हंसराज जयपुरी ने इस गीत की रचना की, शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया ये गीत आप सुन रहे थे जाने अनजाने फिल्म से और ये गीत बना कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की आखिरी प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये

0: प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।

0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
1: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
2: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
1: सभी मदरसों को UDIS यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
4: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं

0: को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है, एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के मैं ही चैनल को और मैं हूँ आपकी दोस्त रेडियो होस्ट हिना जैन, लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से। दोस्तों, कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हर सपना आसान लगता है, हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है और हर दिन जीने का उत्साह देता है। लेकिन जब स्वास्थ्य साथ ना दे तो दुनिया की सारी खुशियां भी अधूरी लगने लगती हैं। आज विश्व चिकित्सक दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, डॉक्टरों के सेवा भाव की और उस अनमोल जीवन की जिसे स्वस्थ रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आइए इस सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुंदर से गीत के साथ।

अक्सर हम धन, सफलता और नाम कमाने की दौड़ में अपनी सेहत को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन सच यही है कि स्वस्थ शरीर के बिना हर सफलता अधूरी है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन की प्रसन्नता अपनी चरम सीमा पर होती है। काम में मन लगने लगता है, रिश्तों में मिठास बनी रहती है और जीवन का हर पल सुंदर लगता है। इसलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। दौलत से नहीं, सेहत से अमीर बनो। मुस्कुराहटों की सबसे बड़ी जागीर बनो। स्वस्थ तन और शांत मन हो अगर, तो हर दिन जीवन का उत्सव बनो। इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं एक और मजेदार सा गीत।

दोस्तों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले जिस चेहरे पर भरोसा होता है वो होता है डॉक्टर का। डॉक्टर केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि उम्मीद भी देते हैं। उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास और उनकी सेवा भावना कई मरीजों के लिए नई जिंदगी की शुरुआत बन जाती है। विश्व चिकित्सक दिवस उन सभी डॉक्टरों को धन्यवाद करने का अवसर है जो दिन रात मानव सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर का इलाज दवा से शुरू होता है लेकिन उसका भरोसा मरीज को पहले ही आधा ठीक कर देता है, क्योंकि कई बार डॉक्टर मरीज के अंदर आत्मविश्वास जगाते हैं, जीने की इच्छा जगाते हैं और एक उम्मीद देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो आज विश्व चिकित्सक दिवस के अवसर पर उन सभी डॉक्टरों को धन्यवाद जो हर उस पीड़ा में मौजूद व्यक्ति को एक उम्मीद देते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। समय पर भोजन, पर्याप्त नींद, थोड़ी सी सैर, थोड़ा व्यायाम और सकारात्मक सोच, यही छोटी छोटी आदतें जीवन को बेहतर बनाती है। अगर हम हर दिन अपने लिए सिर्फ आधा घंटा निकाल लें तो शायद अस्पताल जाने की जरूरत बहुत कम पड़ जाए। चलो सेहत से दोस्ती कर लें, हर दिन थोड़ी सी खुशियां भर लें, तन स्वस्थ होगा, मन मुस्कुराएगा, जीवन हर पल नया गीत गाएगा। और यही प्रण आज के दिन पर हम सभी को लेना है, थोड़ा सा समय खुद के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये शरीर ही तो है जो दुनिया की और जिंदगी की बाकी सारी चीजें कर रहा है। तो सबसे पहले जरूरी है अपना ख्याल रखना, अपने शरीर का ख्याल रखना। तो यही प्रण हम सभी आज विश्व चिकित्सक दिवस के दिन लेते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हम अक्सर शरीर की चिंता करते हैं लेकिन मन की थकान को नजरअंदाज कर देते हैं। तन और मन एक दूसरे के साथी हैं। अगर मन परेशान होगा तो शरीर भी उसका असर महसूस करेगा। इसलिए खुलकर हंसिए, अपनों से बातें कीजिए, प्रकृति के बीच समय बिताइए और खुद को थोड़ा आराम भी दीजिए। याद रखिए, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। जहां मन शांत होता है वहीं से अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। तो इसलिए तन और मन दोनों को खुश रखिए। और इसके लिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे पूरी ऊर्जा, पूरे उत्साह और अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीना चाहिए। अपने शरीर का सम्मान कीजिए, अपने मन को भी समय दीजिए और उन डॉक्टर्स का सम्मान कीजिए जो हर दिन अनगिनत लोगों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं। आइए आज विश्व चिकित्सक दिवस पर हम एक छोटा सा संकल्प लें। स्वस्थ रहेंगे, दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे और अपने स्वास्थ्य को कभी हल्के में नहीं लेंगे। और कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। सेहत से बड़ा कोई उपहार नहीं,

अलग से सुंदर कोई श्रृंगार नहीं। स्वस्थ रहो, खुश रहो, हर पल यही जिंदगी का सबसे अनमोल सार है। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपना और अपनों का स्वास्थ्य संभालिए, डॉक्टरों का सम्मान कीजिए और मुस्कुराते हुए जीवन जीते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन अगली बार फिर मिलेंगे नए दिन नई बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिल से। मैं हिना जैन लेती हूँ आप सभी से इजाजत। मिलते हैं नए दिन अगली बार। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का मैं ही चैनल है, FM बैंड 103.3 MHz पर। प्रातः के 8:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पूजा सोनिका ममता दीपाली व अन्य साथी कलाकारों की मिश्रित आवाजों में गायक कुछ राजस्थानी गीत।

0: मुख्य समाचार। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्निंग सम्मेलन आज से जयपुर में। दो दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल। और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा, संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्निंग सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस दो दिन के सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के श्रमिक रोजगार गारंटी देने वाला अधिनियम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएगा। केंद्र सरकार ने VBG रामजी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम नहीं हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 200

0: रूपये 80 पैसे से बढ़ाकर बीबीजी रामजी के तहत 327 रूपये 40 पैसे प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत बढ़ोतरी हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। बीबीजी रामजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आज से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, दोपहर 1 से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल यानी मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजार में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। इस बीच तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम के अनुसार संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमतों में कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर 2,930 रूपये हो गई है। इस निर्णय से रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और खाद्य तथा पेय पदार्थों के कारोबार से जुड़े व्यवसायों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर धनावड़ा के पास आज अलसुबह एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार ने आकाशवाणी को बताया कि यह दुर्घटना एक स्लीपर बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद उसमें आग लगने से हुई। आग के बाद कई यात्री जलती हुई बस में फंस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल यात्रियों में से अधिकांश मध्य प्रदेश और ऋषिकेश के हैं।
1: हरिद्वार से इंदौर जा रही थी बस, और रहते टाइम इनका कोई ट्रेलर से एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ ये तो इन्वेस्टिगेशन बाद मालूम पड़ेगा। 35-36 सवारी होनी चाहिए इसमें, जिसे 22 इंजर्ड हुए हैं और 8 की कैजुअल्टी है। ये 2:30 से 3 बजे के बीच का है, सुबह रात को मतलब। और जो इंजर्ड थे उनको प्राथमिक उपचार चल रहा है, उनका वो ठीक है, अगर ज्यादा सीरियस नहीं है, पर जो कैजुअल्टी हुई है वो काफी दुखदायी है। हो सकता है ट्रेलर से टकराई हो या ड्राइवर को जब्ती आई हो, ये तो अभी फाइनली इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। करौली जिले के पांचने बांध के पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझ गया है। जयपुर में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद लिखित समझौता हुआ। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़े जाने की तारीख तय करेगा। इसके बाद नहरी तंत्र की जांच के लिए जल प्रवाह शुरू किया जाएगा। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि 2,100 एमसीएफटी क्षमता वाले पांचना बांध से लगभग 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। इस समझौते से क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
2: समझौते के तहत गुडला क्षेत्र के 21 राजस्व गांवों को लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि पांचना बांध के कमान क्षेत्र की नहरों में भी जल प्रवाह शुरू होगा। जल संसाधन विभाग 7 दिन के भीतर पानी छोड़ने की तिथि तय करेगा, जिसके बाद नहरी तंत्र की तकनीकी जांच और टेस्टिंग शुरू की जाएगी। सरकार ने नहरों की मरम्मत के कार्य को भी गति देने का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि कमांड क्षेत्र के किसान नहरों में पानी छोड़ने और कैचमेंट क्षेत्र के किसान लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से अपने गाँव को पानी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर

0: आंदोलन थे, दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने से जिले के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बाकी वैनी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: और अब मौसम। हवाओं में नमी के प्रभाव से प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी का असर है। दिन के समय कड़ी धूप के साथ उमस भी लोगों को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग ने अगले 4-5 दिनों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में। 2 दिन के सम्मेलन का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में आज से लागू। केंद्र सरकार ने संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में 8 लोगों की मृत्यु, 20 से अधिक लोग घायल। और पांचना बांध पानी बंटवारे को लेकर पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा विवाद सुलझा, संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी 5 वाला का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः 9:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 93.3 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
0: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मणिपुरी, नीलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंती बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
0: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण मित्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान,

0: जिज्ञासा विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटुए।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, इस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं। श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाए तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है।
1: जी
0: निलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
1: जी
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विनेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटियोर बम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ, पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसे सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे, इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन

0: एक बात तो है
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है, इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की जानकारी से, प्रश्न है सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूँ सचिन और मेरे साथ ही कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
3: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
4: यस मैम।
3: हाँ हाँ, क्या बात है
5: मैम।
3: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
3: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
3: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती हैं, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
3: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
4: यस मैम।
3: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
4: अच्छा।
3: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
4: अच्छा।
3: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना। बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
3: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है।

0: और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात,
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
4: हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल जी। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
2: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
4: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नील गाय, सांबर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य है तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है। अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
1: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
1: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का यह अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारे श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो

0: शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
1: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती है, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूँ, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बहन बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है।

0: चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हैं? अरे जानते नहीं कि मुखिया पानपुरी का दुकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। इस समय कोई फरियाद फरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
3: अच्छा देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई

0: बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
1: ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
2: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि
1: वो आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
2: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
1: भरने दो।
2: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
1: अरे तो जाने दो।
2: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकल कर जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते।
1: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
2: मुखिया जी,
1: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
2: जी मगर
1: जाओ, चले जाओ यहाँ से। अब क्या है?
3: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
1: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी, मुखिया जी,
1: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है?
2: जियो, दूसरी मंजिल पर भी पानी
1: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
1: नारायक डरपोक, ये भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
4: अरे ये तो सचमुच चला गया।
2: कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है?
4: छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या हो रहा है? नहीं,
5: ये इतना मजबूत मकान,
6: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
7: सेल्यूलॉइड किस्से

एक जाने माने शायर, एक जाने माने गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आस

0: फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क
1: सब सखियों का पिया पियाला सब में है और सब सुनारा
0: और फिल्म थप्पड़
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर गरुण सा।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की है ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी ज़बां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ,
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्मी दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़ और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का क्रमवार आप बताए और रचना प्रक्रिया बताए।
4: मुल्क का गाना आप सुनाए पिया समाए।
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
4: हाँ,
3: कव्वाली।
4: यस यस,
3: कव्वाली के शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
3: जी बिल्कुल। हाँ, पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ, इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: ये आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी है जो याद की जाएंगी।
3: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
4: जिक्र किया जाए,
3: दर्ज होती है आज के समय।
4: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
3: बिल्कुल।
4: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
3: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चलिए, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
4: जी हाँ जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप।
3: जी
4: बिल्कुल।
3: तो
4: आर्टिकल 15 से
3: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
4: उस गाने की कहानी ये है कि
3: कोई दिलचस्प बात हो।
4: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ।
3: हाँ,
4: आप यू समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
3: पड़ा है इजाजत फिल्म
4: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
3: अरे क्या बात है।
4: हाँ, उल्टा मतलब कि
3: तो सामान देना है।
4: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो।
3: हाँ,
4: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
3: हाँ,
4: ठीक है,
3: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर। हाँ,
4: तो उसमें जो गाना है।
3: हाँ,
4: वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मूवमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा जगह लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हो सकते हैं,

0: तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
0: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो। हाँ। लेकिन मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी
1: जी।
0: हाँ,
1: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
0: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
1: क्या बात है, वाह।
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
0: है ना।
1: तो
0: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई, ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
1: रंगी है
0: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं। तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, कोई नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
1: जी।
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट पिया समाया, हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने के बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलियाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो।
1: हाँ, और हम जो है मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे।
0: जी जी।
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है।
0: हाँ।
1: और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए।
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातो पिया के,
0: सात रंग हैं सातो पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी,
1: हम ये सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए।
0: जी जी।
1: ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है।
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा। ठीक है, डबल मीनिंग है, इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना वो
0: छुपाओं के
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी।
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल, दो अर्थी।
1: तो हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के,

0: देख सखी कभी तू भी लगा के,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे,
1: रंग दिखाई
0: पड़े। हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली।
1: वाह, क्या बात है,
0: सातों से मिलके भई मैं उजली, कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात,
0: पिया समाये पिया समाये, जिया में मोरे पिया समाये। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ।
1: जी जी।
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है, ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपके फिल्म धोखा में, फिल्म धोखा।
1: हाँ,
0: एम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं।
1: क्योंकि मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची है।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका, भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये गाना जो है एमएम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो। और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें। और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर।
0: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना
0: जी।
1: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी। मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक

0: जी, अगर तुम मिल जाओ
1: जी,
0: बहुत बहुत मशहूर हुआ था
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना
0: जी,
1: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था, वो ऐ बेखबर ऐ बेखबर
0: जी जी, हाँ।
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
0: जी,
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
0: जी, जी। तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
1: आए बेखबर
0: सुनते हैं, हाँ। ये गाना

0: कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी जी,
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नाम ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने वो गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ,
0: और
1: 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगने
0: जी,
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट

0: हुई पिक्चर और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको? पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था?
0: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात।
1: अच्छा।
0: तब मैं सूरत में रहता था।
1: जी जी।
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा।
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना।
1: वहाँ तनवीर खान भी के
0: हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी।
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ। तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ क्या बात है।
0: ठीक है। तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: ओ, क्या बात है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे।
1: जी जी।
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी अलग बिजनेस से, रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर। अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊंगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप से

0: समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है। अच्छी कहानी।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का।
1: हाँ,
0: लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया, तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी, और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी,
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जी, जो राइटिंग है, और वो गाना इतना मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गाया। हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स है के साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत।
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुन रहा है?
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना, मदहोशी है, मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज्म

0: लिखी जाए। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई है, तुलसीदास की जी हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी है, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
1: उर्मिला सखी वे मुझसे कहते जाते
0: हाँ,
1: बहुत बढ़िया।
0: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है। मैंने एक नया रास्ता निकाला पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं। तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें। तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया तब मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है अगर जंगल पर किताब है रामायण पर किताब है। तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले। और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में
1: जी।
0: तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है। उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है और किस तरह से मतलब हिंदू मैथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया
1: और बहुत बढ़िया बात कहिए। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव है, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, आपके अल्फाज हैं। आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो।

0: आप आगे बढ़े। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है,
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर।
0: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया। मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते में अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना, शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह,
0: ये सीख है हम सबके लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
0: आप भी
1: नमस्कार।
0: ममता जी,
2: जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 11 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनू निगम की आवाज में गाए कुछ कैरफुल गीत।

ओ प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूं, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब समय हो चला है फिल्म संगीत का।

फिल्म एक्शन रिप्ले से लिया ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे गाया था श्रेया घोषाल ने, बोल लिखे थे अर्शद कामल ने और धुन बनाई थी प्रीतम ने। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म एयर लिफ्ट से, अरिजीत सिंह की आवाज, तुलसी कुमार के बोल, अमाल मलिक का संगीत निर्देशन।

0: रामन दाखनी जी, यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
1: जी,
0: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
1: जी।
0: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू के राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
1: जी।
0: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए, हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
1: जी।
0: आपने मीम की बात की है, मीम हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
1: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
0: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
1: जी,
0: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। डैडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा।

0: पाठक तक नहीं पहुंच रहा है तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पर्दे से कतराते हैं।
1: जी।
0: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
1: जी।
0: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
1: नहीं पाया। जी।
0: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं। कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका ले किसका ना ले, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं है। थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है,
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग लेखक हैं, क्या व्यंग सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है।
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वो विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
1: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
0: जी। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
1: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी चाहिए।
0: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं। किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
1: जी। हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है।
0: जी।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
0: जी, जरूर। कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है।
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनाएं।
1: आई

0: हरिशंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: ये आपकी बात सही लगती है मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी,
1: व्यंग्य का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग्य बिरादरी से बाहर है, लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है
1: जी,
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे

0: वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूं जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीजें तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
1: जी जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए
0: जी।
1: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
0: जी मंदाकिनी जी ने, आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है, और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
1: जी,
0: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है, और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं
1: जी।
0: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे, जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
1: जी जी,
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत, यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
1: अरे दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: है ना,
0: निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको

0: आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जुड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
0: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर के यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
0: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है। प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
0: जी
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा
0: जी
1: जोखा लिखा है।
0: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन
1: दृष्टि और पांव।
0: दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है और जो जीवन दर्शन है वो दर्शन भी इसमें आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं। मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिलाकर के मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी में मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है, मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास न हो, मुझे भूल जाता है कि यहाँ फोटो भी खींचनी चाहिए
1: जी।
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूँ मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूँ बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत और सुनना चाहेंगे हम
0: जी।

ये था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

FM 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए अब आपको अवगत करवाते हैं हमारी आज की सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण से।

अब से कुछ ही देर में 5:05 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। वहीं शाम 7 बजे समय रहेगा महिलाओं का कार्यक्रम वैरानी बात का।

सदाबहार नगमों के सफर पर आपको लेकर चलेंगे रात्रि 10 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर एवं रात्रि 9 बजे। वहीं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:30 पर। हमारी शाम के समाचारों का समय कुछ यूं रहेगा। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार एवं 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। वहीं रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वहीं रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार। हमारी कल की सभा का आरंभ होगा प्रातः 5:53 पर, जिसमें प्रातः 6:05 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम चिंतन एवं 6:10 पर कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान का प्रसंग। वहीं 6:45 पर समय रहेगा किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती निवाद का। वाकड़ी लोक संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 6:50 पर। कार्यक्रम वातायन आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर एवं दिल्ली जज्बातों का कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुन पाएंगे प्रातः 8:15 पर।

सुगम संगीत आप सुनेंगे प्रातः 9:10 पर एवं प्रातः 11 बजे। वहीं 9:30 पर आप सुन पाएंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और सदाबहार नगमों के सफर पर आपको लेकर चलेंगे प्रातः 11:30 पर।

इन समाचारों में आप सुनेंगे प्रातः 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार, प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात। वहीं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे प्रातः 9 बजे।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से हमारी आज की प्रातकालीन एवं सायंकालीन सभा में होने वाले प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

हालात चाहे जैसे भी हो, इरादे साफ होने चाहिए। रास्ते खुद ही मिल जाते हैं, बस कदम बेबाक होने चाहिए। वक्त बदलने में देर लगे तो सब्र का साथ होना चाहिए। मंजिल खुद पास आ जाएगी, बस कदम सच्चे होने चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम में यूं बोले सुनने वाले सभी युवा साथियों को मेरा स्नेहिल नमस्कार। दोस्तों, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और सफलता के लिए निरंतर प्रयास भी करना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, मेहनत से घबराए नहीं, कार्य को खुशी से करें और अपने आप को उत्सव माने। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह उत्सव में हम खुशियां मनाते हैं, खुशी खुशी हर कार्य करते हैं, उसी तरह अपने कार्यों को भी खुशी खुशी करें, उससे घबराए नहीं। दोस्तों, काम को बोझ न माने। जब भी अपना कोई काम हो, उसे कर्तव्य समझकर करें। सफल व्यक्ति काम को कभी वजन नहीं मानता है और न ही उसे समस्या के रूप में देखता है। सफल व्यक्ति अपने कार्य को कर्तव्य मानता है और उसे खुशी खुशी उत्सव मानकर करता है। जब आप अपने कार्य को आनंद के साथ उत्सव मानते हो, तो आप उस कार्य को कभी अगर टालते नहीं हो और पूरी मेहनत और ताकत के साथ अगर उस कार्य में लग जाते हो, तो दोस्तों एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि युवा वर्ग सफलता हासिल करना चाहता है, तो काम को कभी भी बोझ नहीं माने। उसे मन से करें, लगन से करें, आनंद के साथ करें। क्योंकि दोस्तों, किसी भी कार्य को आनंद के साथ करने पर कार्य सरल हो जाता है और सफलता नजदीक आ जाती है। साथ ही दोस्तों, जरूरी नहीं कि हमें सफलता एक बार में मिल जाए या हर बार आप सफल हो जाएं। कई बार सफलता हमें नहीं भी मिलती है, तो हमें इससे घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, एक अवसर मानकर फिर से प्रयत्न कर आगे बढ़ना है। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी सफलता है तो कभी असफलता, ये चलता ही रहता है। उसे व्यक्तिगत नहीं लेकर यह सोचे कि मैं अकेला नहीं हारा हूँ, मेरे साथ अन्य व्यक्ति भी हारे हैं, उन्होंने भी संघर्षों का सामना किया है। फिर से कोशिश कर, मेहनत कर आगे बढ़ूंगा और अपने सपनों को पूरा करूंगा, इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, असफलता सुधरने का मौका देती है। पिछली बार आपने जो कमी रखी है, जो गलतियां की है, इस बार उसे ना दोहराएं। सतर्कता के साथ अपने कार्य पर फोकस करें।

गलतियों को खोजने का प्रयास करें और उनसे सीख भी लेते रहें, क्योंकि दोस्तों जीवन में सफलता विफलता के सिलसिले तो चलते रहेंगे। जिसने इस बीच अनुभव ले लिया वो अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: दोस्तों, आज का दिन हमारे समाज में उन व्यक्तियों का दिन है जिनके अमूल्य योगदान, समर्पण और अथक परिश्रम को सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस की। डॉक्टर न केवल बीमारियों का इलाज करते हैं बल्कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी वे अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष आज के दिन 1 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन सभी डॉक्टरों को समर्पित है जो अपनी मेहनत, सेवा और समर्पण से लोगों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं। तो आज के दिन सभी चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, बात करते हैं चिकित्सक दिवस के इतिहास की कि ये दिवस कब से मनाना शुरू हुआ और क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, आज का दिन देश के महान चिकित्सक

स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिमी बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती की स्मृति में मनाया जाता है। उनके चिकित्सा और समाज सेवा के योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1991 में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। तब से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिन केवल प्रशंसा का ही नहीं, यह डॉक्टरों द्वारा प्रतिदिन निभाए जाने वाले कौशल, विवेक और जिम्मेदारी के प्रति सम्मान का भी दिन है। यह उन डॉक्टरों को सम्मानित करने का दिन है जो निदान, उपचार, सर्जरी, स्वास्थ्य लाभ और जीवन के कुछ सबसे कठिन क्षणों में रोगियों का मार्गदर्शन करते हैं, जो हर दिन स्वास्थ्य सेवा के केंद्र में खड़े रहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर समाज में सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जिन्हें ईश्वर के बाद जीवन रक्षक या भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। इनका पेशा सबसे नेक और सम्मानित पेशों में से एक है। दोस्तों, ये डॉक्टर जीवन को बचाने और रोगियों के इलाज करने में डॉक्टर की अटूट प्रतिबद्धता और सहानुभूति सच में हमारी दुनिया को समृद्ध बनाती है। इसीलिए सभी डॉक्टर्स को एक बार फिर से डॉक्टर्स दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों वन महोत्सव सप्ताह जो हमारे भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, इस वर्ष भी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण करना है। इस सप्ताह को एक वृक्षारोपण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण, वनों की कटाई को रोकना और हर व्यक्ति को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना इस सप्ताह का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों हरियाली सभी को पसंद होती है। हम अपने घर के आंगन में, घर के बाहर, आसपास सभी जगह पेड़ पौधों को देखते हैं और पेड़ पौधों को लगाते भी हैं। इसके लिए हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना भी आवश्यक है, उनको काटने से रोकना जरूरी है, अपने आसपास में गंदगी ना होने दें और साथ ही वनों की कटाई को भी रोकें। अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना और उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वन महोत्सव वनों के महत्व और पेड़ों की कटाई से होने वाले नुकसान और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मानसून के आगमन के समय 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। दोस्तों जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव सप्ताह मनाने का मुख्य कारण ही यही है कि मानसून के आगमन से पहले लगाए गए पौधों को पनपने और विकसित होने की संभावनाएं इस समय सबसे अधिक होती है। इस सप्ताह स्कूल, कॉलेज, निजी संस्थानों और सरकारी संस्थानों सभी जगह वृक्षारोपण किए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वृक्ष ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है जो वायु प्रदूषण को कम करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। दोस्तों यह महोत्सव जैव विविधता को संरक्षित करने, वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास को बचाने की प्रेरणा देता है। तो हमें भी आज यह प्रण लेना है कि हम अपने आसपास खुले स्थानों पर पेड़ पौधों को लगाएं और दूसरों को भी वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित करें, तभी हमारा यह वन महोत्सव सप्ताह मनाना सार्थक होगा। क्योंकि दोस्तों करते हैं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, अपने वातावरण को स्वच्छ बनाएं, पेड़ लगाएं और हरियाली लाएं। सुनते हैं दोस्तों एक प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों एक बार फिर डॉक्टर्स डे की सभी डॉक्टर्स को हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही जो अभी वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है तो आप सभी भी अपने आसपास और खाली स्थानों पर वृक्षारोपण करें और

रोके और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलते हैं एक नए विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत आपकी रेडियो सखी अर्पिता जैन को। कार्यक्रम समाप्त करने की नमस्कार।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर।

फिल्म संगीत का पहला गीत सुने फिल्म लैला मजनू से। बोल है जोई बरुआ की, सॉरी आवाज है जोई बरुआ की, बोल है इरशाद कामिल की, संगीत है जोई बरुआ का।

फिल्म विश्रम से सुना आपने ये गीत, आवाजें थी अमित भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल की, बोल थे राजीव बरनवाल के और संगीत था ललित पंडित का। फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए फिल्म अंधाधुन से, आवाज है अमित त्रिवेदी की और बोल है जयदीप सहानी की, संगीत दिया अमित त्रिवेदी ने।

फिल्म अंधाधुन से सुना आपने ये गीत। आवाज और संगीत था अमित त्रिवेदी का, बोल थे जयदीप सहानी की। फिल्म संगीत के हमारे इस कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत, फिल्म हाईवे सी। आवाज और संगीत है ए आर रहमान का, बोल है इरशाद कामिल की।

फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए फिल्म तमाशा से। आवाज है लकी अली की, बोल इरशाद कामिल की और संगीत है ए आर रहमान का।

फिल्म संगीत का अंतिम गीत सुनिए फिल्म रॉकस्टार मूवी से। आवाज है मोहित चौहान की, बोल और संगीत है ए आर रहमान की।

0: आपने सुना गीत फिल्म रॉक स्टार से, आवाज थी मोहित चौहान की, बोल और संगीत थे एआर रहमान के। इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज, FM बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर व दूरदर्शन के DTH चैनल पर। आइए अब आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम रूपरेखा में

शाम 7 बजे श्रोता सुन सकेंगे ग्राम भारती कार्यक्रम। आज बातचीत का विषय रहेगा मौसमी बीमारियां एवं बचाव। वार्ताकार रहेंगे सुरेश चंद्र जैन।

शाम 7:30 पर किसान भाई बहनों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी प्रसारित होगा। आज बातचीत होगी संरक्षित खेती से सब्जियों की खेत में बेहतर कमाई। वार्ताकार है गुलाब चौधरी।

0: अब से थोड़ी देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार। इसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्ट

0: दिल्ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। अब शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे गाना फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से, जिसे गाया था सोनू निगम ने, बोल दिए थे जयदीप सहानी ने और संगीत में सजाया था सलीम सुलेमान ने। इसी के साथ वक्त हो चला है अगले गाने का।

अभी आप सुन रहे थे गाना मटर गश्ती, फिल्म थी तमाशा, जिसे गाया था मोहित चौहान ने, बोल दिए थे इरशाद कामिल ने और संगीत में सजाया था ए आर रहमान ने। इसी कड़ी में आज के फिल्म संगीत का आखिरी गाना।

0: इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अगली उद्घोषणा की कृपया प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये अजमेर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉयड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजरात।

0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा और राज्य में मॉनसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू, पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव का सशक्त माध्यम बनी है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से सरकारी योजनाओं में बिचौलियों का दखल खत्म हुआ है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि डीबीटी से हर योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। राजस्थान में तकनीक को जनकल्याण का माध्यम बनाया जा रहा है।
1: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से एआई का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मार्ट परियोजना, ई मित्र, व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इससे पहले श्री शर्मा ने तकनीकी सेवाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री शर्मा ने बताया कि राज्य को डेटा सेंटर क्षेत्र में 43,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें एसटीटी, जीडीसी, एचजी एकाया, नायो बोल्ट सहित कई नामी कंपनियां शामिल हैं। प्रदेश के आईटी और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तकनीकी नवाचारों से न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन की बात सार्थक हो रही है।
2: हर सेक्टर के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है और इसीलिए जो जनधन, आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके जो लीकेजेस खत्म हो गए। आज यूपीआई जो पहले मजाक बनाया जाता था आज यूपीआई गांव गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसे हम राजस्थान में करें या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
0: राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राजस्थान सरकार की ओर से किया जा रहा है। सम्मेलन में कल विभिन्न प्लेनरी और ब्रेकआउट सत्र होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ समारोह का समापन होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने राजधानी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। बैठक के फैसलों की मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग को स्वीकृति दी गई है। इससे पश्चिम और दक्षिण दिल्ली के बीच संपर्क बेहतर होगा। इस पर 6,970 करोड़ रूपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
3: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल, ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़, उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे के मद्देनजर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। श्री मोदी बालोतरा के पचपदरा स्थित देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे।

0: प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दौरे को यादगार बनाने और हरित विकास की अलख जगाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जा रहा है।
1: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज लोक मंथन 2026 के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शिरकत कर रहे हैं। हम भारत के लोक थीम पर इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का आयोजन इस साल दिसम्बर महीने में होगा। ये आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय चिंतन को समर्पित है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: की थी। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज खिलौना बैंक शुरू किए गए, साथ ही इन केंद्रों पर प्रवेशोत्सव और पौधरोपण के कार्यक्रम भी रखे गए। महिला और बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने जयपुर के गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों को प्रवेश किट भी वितरित किए। उधर नंद घर योजना के तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पाली के महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पवार ने बताया कि जिले के 222 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर में बदलने का काम पूरा हो चुका है।
1: जिले में 222 नंदघरों का निर्माण किया गया है। बाला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहते जिसमें और केंद्रों को भी नंदघर में चयनित किया जा सकेगा।
0: जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर आज स्वायत्त शासन विभाग के सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन के बीच वार्ता हुई। इसमें यूनियन की कुछ मांगों पर सहमति बनी है। विभाग के सचिव रवि जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की ओर से कुछ मांगों पर सहमति के बावजूद सफाई संगठन अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में परंपरागत रूप से साफ सफाई का काम कर रहे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी, और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
0: सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जल्दी ही हड़ताल समाप्त करने के बारे में औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। राज्य में अगले 2 दिनों में मॉनसून के आगमन की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून राज्य के पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून के सक्रिय होने से कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं 6 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर भागों में बरसात शुरू होने की उम्मीद है। इस बार मॉनसून की दस्तक करीब 8 दिन देरी से होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने इस बार जुलाई महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। इस बीच मॉनसून के प्रवेश से पहले प्री मॉनसून गतिविधियां कुछ भागों में सक्रिय है। बीते 24 घंटों में कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बरसात हुई। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चली। भरतपुर में सुबह पानी बरसने के बाद दिन भर ठंडी हवाओं का दौर चला। राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर आज छितराई हुई बारिश हुई। आज 24 जिलों में आंधी और बरसात की चेतावनी है। कल से 4 जुलाई के बीच बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज रफ्तार हवाएं और धूल भरी आंधी का अलर्ट बताया गया है। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर हिस्सों में दिन भर तेज धूप और उमस का असर रहा। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के समर्पण, सेवा भावना और मानवता के प्रति योगदान का सम्मान किया जाता है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की सह आचार्य डॉक्टर अदिति ने चिकित्सा पेशे को सेवा के साथ ही आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला बताया।
3: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं। आप उनसे अस्पताल में सीधे न मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारों को बदलाव का सशक्त माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आबादी बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें जल्द पेश करने को कहा। और राज्य में मॉनसून के आगमन का काउंटडाउन शुरू।

0: पूर्वी हिस्से से प्रवेश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से डूंगरपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख चिंतन जोशी ने तैयार किया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 28 से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पहले दिन जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर पोलियो बूथ स्थापित किए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान हर पात्र बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। नगर परिषद क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बिजली, पानी, सड़क, पट्टा वितरण, नाम परिवर्तन, आबादी, भूमि से जुड़े प्रकरणों सहित विभिन्न कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर देशल दान सहित प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से शिविरों का निरीक्षण कर रहे हैं और आमजन की समस्याएं सुन रहे हैं। गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डयाणा में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर जिला सांख्यिकी विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांख्यिकी के महत्व और विकास योजनाओं के निर्माण में आंकड़ों की भूमिका पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। वनपाल भर्ती परीक्षा जिले में 34 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे और अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जाँच की गयी। प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से परीक्षा के सफल संचालन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गयी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के किसानों को 23वीं किस्त जारी की गयी। कृषि विज्ञान केंद्र फलोज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कृषि विभाग के अनुसार जिले के 1,53,000 से अधिक किसानों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से राशि जमा की गयी। खातों में राशि पहुंचने पर किसानों ने खुशी व्यक्त की। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को भूमि की उर्वरता बनाए रखने, रासायनिक उर्वरकों के सीमित उपयोग और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। आदिवासी अंचल की शिक्षा की प्रतीक शहीद वीर बाला कालीबाई का शहादत दिवस जिले भर में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। उनकी जन्मस्थली रास्तापाल सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और बलिदान को याद किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती भी जिले भर में मनाई गई। विभिन्न संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में महाराणा प्रताप के त्याग, साहस और स्वाभिमान को याद किया गया। वक्ताओं ने युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय समारोह डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन और सूचना तथा जनसंपर्क विभाग की ओर से विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जिले में पिछले दिनों प्री मॉनसून की अच्छी बारिश हुई। बारिश से तापमान में कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि उमस का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम में बदलाव के बाद किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है। किसान खरीफ फसलों की तैयारी में जुटने लगे हैं और अच्छी मॉनसूनी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। इसी के साथ डूंगरपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचारा ने बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारू तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलाव बारा माए बनाई जी आला दर्जारी समिति सिफारिशां बेगी देवन सारू कहो। और राज्य में चौमासारी बिरखा बेगी सरू है वन रा आसार। उगनी हल्काओं बिरखा सरू है वन रे संभावना। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि डिजिटल गवर्नेंस देश में बदलाव रो मजबूत जरियो बनी है और तकनीक काम लेर सरकारी योजनावां में दलालान रो दखल खत्म भयो है। श्री शर्मा आज जयपुर में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन रा उद्घाटन समारोह में बोल रहा है। वे कहो कि डीबीटी हर योजना रो फायदो सीधो पात्र लोगों रा खाता माए पूग रियो है।
1: राजस्थान में तकनीकी को जनकल्याण का प्रभावी माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारा मानना है कि डिजिटल तकनीक कामकाज को केवल आसान ही नहीं बनाती बल्कि नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक और बेहतर भी बनाती है। इसी सोच के साथ हमने राज्य में राजस्थान AI ML पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति से AI का उपयोग प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से करने का आधार तैयार हुआ है।
0: मुख्यमंत्री ई मौके स्मार्ट परियोजना ई मित्र व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज री शुरुआत की। इनो पहली वह तकनीकी सेवाओं बारा माई लगाई जी प्रदर्शनी रो उद्घाटन किनो और वन निरखी। ई पाछे श्री शर्मा उद्योगों नुमाइंदा सागे बातचीत भी कीनी। इन दौरान वे बतायो कि राज्य ने डेटा सेंटर हल्का माए 43,000 करोड़ रुपए बत्ती रकम रा निवेश प्रस्ताव मिलिया है। आम आए STT, GDC, HG एकाया और नायो बोल्ट समेत कई नामी कंपनियां शामिल है। प्रदेश रा IT और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ही कार्यक्रम माए वारा विचार बताया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था राठौड़ कहो कि तकनीकी नवाचाराओं न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन री बात सांची वे रही है।
2: हर सेक्टर के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का महत्व है और इसीलिए जो जनधन आधार और मोबाइल को जोड़ा गया उससे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके जो लीकेजेस खत्म हो गए। आज UPI जो पहले मजाक बनाया जाता था आज UPI गांव गांव में हो रहा है। एक महीने के अंदर तकरीबन 23 बिलियन ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। कौन से नए तरीके अपनाए जा सकते जो दूसरे राज्यों में हो रहे हैं उसे हम राजस्थान में करें या राजस्थान के अंदर जो नए प्रयोग हो रहे हैं वो दूसरे राज्यों में करें। इस तरह का ये सेशन भारत को मजबूत करेगा, भारत के सुशासन को मजबूत करेगा और अंत में हर नागरिक को मजबूत करेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राज्य सरकार का न्यू मिलर कराया जा रहा 2 दिन रा इन सम्मेलन रो मुद्दों विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस राखी चियो है। सम्मेलन में काल न्यारा न्यारा प्लेनरी और ब्रेकआउट सेशन रखा जावेला। ये पाछे केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार देवेला। केंद्रीय कैबिनेट राजधानी दिल्ली सारू खास परियोजना न मंजूरी दीनी है। मीटिंग में करीजिया फैसला ने जानकारी देता थका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतायो कि 8 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग ने मंजूरी दी रही है। इनो आतुनी और लंकाऊ दिल्ली बीच जुड़ाव बेहतर भेला। ई काम में 6,970 करोड़ रुपये बत्ता खर्च कर जावेला।
3: कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे, फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल। ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे 7,145 करोड़। उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है, एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग इम्प्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा न ध्यान रखता थका तैयारियां जोर शोर चल रही है। श्री मोदी रो बालोतरा रा

0: पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ने जनता ने सौंपण रो कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल रोई उद्घाटन करेला। माणा बालोतरा खबरनवीस बतायो कि प्रधानमंत्री रा दौरा ने यादगार बनावण और हरित विकास री अलख जगावण सारू मोटा पैमाना माथे पौधा रोप्या जा रहा है।
1: 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे, वहीं इस दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए जिले में वृहत स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। पौधरोपण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक नया संदेश देना है। मंजीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर ही सुन सको हो। इसा गई आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। गृहमंत्री अमित शाह आबादी बदलावां रा बारा माय बनाई ची आला दर्जारी समितियों सिफारिशा बिगी देवन सारू कहो है। वे आज नई दिल्ली माय समिति रा सदस्य सागफी मीटिंग माय हुकम तीनों समिति गृहमंत्री ने बतायो कि राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां रो दौरो कर और ई बारा माय जानकारी हासिल करी जावेला। समिति जानकारी हासिल करण सारू प्रश्नावली बनाई है। ध्यानयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लारला साल आला दर्जा रा जनसांख्यिकी मिशन रो ऐलान की न हो चिंपाचे रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर रे सदारत माए आ समिति बनाई ची ही। प्रदेश रा सगला आंगनवाड़ी केंद्र माए आज खिलौना बैंक शुरू करी चिया। इसागे प्रवेशोत्सव और पौधारोपण रा कार्यक्रम भी राखी चिया। महिला और बाल विकास विभाग रे शासन सचिव पूनम जयपुर रा गौतम नगर आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक री शुरुआत कीनी। इ मौके बच्चा ने प्रवेश किट ई दिया चिया। नंद घर योजना रा तहत पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्र ने और बेहतर बनाया जा रहा है। पालीरा महिला और बाल विकास अधिकारी प्रकाश पवार बतायो कि जिला रा 222 आंगनबाड़ी केंद्र ने नंद घर माय बदलीकरण रो काम पूरो भेक्यो है।
2: जिले में 222 मंदिरों का निर्माण किया गया है। माला पेंटिंग, आरओ, एलईडी, भवन की मरम्मत, शौचालय संबंधी निर्माण आदि कार्य करवाए गए हैं। जो विभाग के लाभार्थी है, गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको जो विभागीय सुविधा अच्छी गुणवत्ता के साथ मिलना सुनिश्चित। अभी और भी इसमें प्रगति रहता है जिसमें और केंद्रों को भी नंदगढ़ में चयनित किया जा सकेगा।
0: स्वायत्त शासन विभाग रा सचिव और सफाई कर्मचारी यूनियन रा नुमाइंदा बीच आज जयपुर में बातचीत हुई। इन दौरान यूनियन री कुछ मांगा माथा एक राय बनी। विभाग रा सचिव रवि जैन खबर नवी संसा के बातचीत करता थका बतायो कि सरकार री ओर कुछ मांगा मान लिया पाछे सफाई कर्मचारियों रा संगठन दूजी मांगा न लेर अड़ रहा है। वह कहो कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती माए मूल रूप साफ सफाई रो काम कर रहे लोगों ने प्राथमिकता दी जावेला।
3: कि जो भी सफाई भर्ती होगी ये राजस्थान फाइनेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज रूल के अंतर्गत होगी और इसके अंतर्गत हमने जैसे पिछली बार भी किया था कि जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता की बात लिखी थी 23 की भी भर्ती में, इसमें भी हम लिखेंगे। जो परंपरागत रूप से सफाई का काम कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 इश्यूज थे, उन सब इश्यूज को भी हमने टेकअप किया है।
0: सफाई कर्मचारी यूनियन रा अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया बातचीत ने सकारात्मक बताता था का कहो कि सफाई कर्मचारियों री हड़ताल बेगी खत्म करने रे बारा में फैसलो लियो जावेला। रबे मौसम राज्य में आवता 2 दिन में चौमासा री बिरखा स्वरूप वन रा आसार है। मौसम विभाग रे मुजब कोटा और उदयपुर संभाग रा कुछ हल्का माए भारी बारिश री संभावना है, जबकि 6 जुलाई तक प्रदेश रा घनखर हल्का माए में स्वरूप वन री संभावना है। इस साल चौमासा री बिरखा लारला साल री तुलना माए करीब 8 दिन मोड़ी स्वरूप वन रा आसार है। मौसम विभाग जुलाई महीना माए प्रदेश माए सामान्य कम बारिश वन रो अंदाजो लगायो है। इन विच राज्य कुछ हल्का माए चौमासाओं पहली रिहल चल चाल रही है।

0: लाडला 24 घंटा माए कोटा उदयपुर और भरतपुर संभाग माए थोड़ी घनी बिरखा भी जैसलमेर माए आज आंधी चाली भरतपुर माए संवारे भी बिरखा पाछे दिन भर सिलो बायरो बाज्यो राजधानी जयपुर माए कठे कठे बारिश हुई। मौसम विभाग आज प्रदेश का 24 जिला माए आंधी बारिश सारू चेतायो है। काल 4 जुलाई बीच बीकानेर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ माए जोरदार बायरो बाजन और आंधी चालन सारू चेताइयो है। आज डॉक्टर्स डे है। महान चिकित्सक स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल रा पहले वाला मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी राय री याद माए ओ दिन मनायो जावे है। ई दिन इलाज रा हल्का माए डॉक्टर रा समर्पण सेवा भावना और इंसानियत रा प्रति योगदान रो मान करियो जावे है। जयपुर रा एसएमएस मेडिकल कॉलेज री एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदिति इलाज रा पेशा ने सेवा सागे खुद ने संतुष्टि देवन वालो बतायो।
1: डॉक्टर्स डे के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक लैब मेडिसिन डॉक्टर हूं, आप हमसे अस्पताल में सीधे न मिलते हो, लेकिन आपकी जांच की हर रिपोर्ट के पीछे हमारी पूरी टीम की मेहनत जिम्मेदारी और ईमानदारी होती है। जब किसी मरीज का सही समय पर सही निदान हो जाए, उसका इलाज शुरू हो जाए और वह स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास लौट आए, यही हमारे काम की सबसे बड़ी संतुष्टि है। आज डॉक्टर्स डे पर मैं समाज से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर जांच करवाएं, डॉक्टर्स की सलाह का पालन करें और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें।
0: आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी नवाचार ने बदलाव रो मजबूत जरियो बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 4 जुलाई ने प्रस्तावित राजस्थान दौरा सारो तैयारियां जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आबादी बदलावा रा बारा माए बनाई जी आला दर्जारी समितियों सिफारिशा बेगी देवन सारू कहो और राज्य माए चौमासारी बिरखा बेगी सरूफे वन रा आसार उगनी हल्काओं बिरखा सरूफे वन री संभावना। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला श्रोताओं का कार्यक्रम वही रानी बात।

बैरानीवाद कार्यक्रम हमारा वारा हाम्रो बैराने सोराडी बिना बेन्नो राम राम राम राम। देखो भाई आज बुधवार नो दाड़ो है नि हाम्रो बैराने आ बुधवार नो दाड़ो पासो याद रे नि हाम्रो बैरा सोरा माते टीम ने अनुसार आवी जाए। देखो भाई अपने बैरा नो कार्यक्रम है अपन तो टीम नो ध्यान राखवो पड़े ने सोराडी हाम्रो बैरो आवी जाए तो हाम्रो थकी एक तो मलवू भी थी जाए ने सब थे की अवाती भी थी जाए। देखो घर में भी आना समय में तो घणु काम रहे पण ई काम सोड़े ने भी अपन सोरा माते बहनों आवुज पड़े। देखो बहनों आज बैरो नो कार्यक्रम है ने आवा लाखो बैरो भी बैठे थक है मारा हमें जोई रे थक है कि भाई विनाद बहन आई थक है हूँ वाते करवाने के ने भाई हूँ वाते करवाने है ई पूरी एक वक्त वेवरा बन जानकारी आल दे। बहनों आज आप बात करूंगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ने बारे में बात करूंगा। बीजी बात करूंगा एक थे कि 7 जुलाई में आज वन महोत्सव मनावांगा तो इन्हें बारे में भी आप चर्चा करूंगा। इन्हें आते एक बीजो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस है तो ई भी बात करूंगा। इन्हें आते बीजी बात है बेनो महिला

बिना देखो आज गीत ही तो ये अपने होने हो क्योंकि वेस वेस में गीत भी होना जरूरी है क्योंकि गीत वगैरह तो जी भी सोरो है अधूरो रह जाए ने अपने काम थकी रहा थकलो रहे तो गीत होने ने मन एकदम हल्कू थी जाए। अभी जाते जाते जरा एक बात फेरी कर ले कि एक थकी सात जुलाई तक आ वन महोत्सव यानी पेड़ पौधों नो उत्सव है मनावा बेनो आ तो हर नागरिक ने जिम्मेदारी है। पूरा भारत में आ एक वार्षिक वृक्षारोपण अभियान ने रूप में वन महोत्सव मनावा आने शुरुआत ही 1950 में थई थी। कृषि मंत्री जी था डॉक्टर के एम मुंशी वक्त वनों ने कटाई रोकवा बदले आम जनता में जी प्रकृति सुरक्षा ने प्रति जागरूकता फैलावी गई थी। जुलाई ने पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनावानो मुख्य उद्देश्य आ है कि बेनो आ समय है मानसून यानी कि वर्षा नो शुरुआत नो है।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी वासवाड़ा के माही चैनल से महिला श्रोताओं का कार्यक्रम वैरानीवाद, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम।

0: ખેતીવાડી કાર્યક્રમની વાત અડીકતા સગળા શ્રોતાઓને અદિતિ ભટ્ટરોને ભર્યો નમસ્કાર અને રામ રામ સા. મહેશભાઈ આપને ભી ઘણું ઘણું રામ રામ.
1: રામ રામ અદિતિભાઈ સા આપને ભી ઓર જો આપના કિસાનભાઈ બેઠા બાટ ઉડીગ રહ્યા હૈ ખેતીવાડી કાર્યક્રમ કી માને ભી ઘણી મોકલી રામ રામ. ઓર જો કિસાનભાઈ આપના જકા ખેતીવાડી કરે હે ઓર જકા આપના ભાઈ લોગ અવાર દેખો માનસૂન અવાળો હૈ ઓર માનસૂન કો અવાળો હૈ તો આપણને દેખો ઘરા કમાય વાત કરા તો શાક સબ્જી દોનો ટાઈમ ચાહે
0: જી સા
1: કે ઘર કમાય દેખો રોટી કે સા દોનો ટાઈમ સબ્જી આપણને ચાહે ઓર સબ્જી અગર ઘર કમાય ઉગેડી હોય ચોકી તાજા હોય ઓર બઢિયા હોય તો બીકો સ્વાદ ભી જ્યાદા બન જાય
0: જી.
1: તો ઘર કમાય દેખો આસપાસ માં થોડી બહોત જગ્યા તો ભી ખાલી પડી રહે ઓર ફેર દેખા આજકાલ ગ્રો બેગ ઓર ગમલા આવે તો બી કમાય કોઈ વ્યક્તિ કે અગર નીચે જગ્યા ના હૈ તો ભી છત યા બાલ્કની કે ઉપર કુછ ઈ પ્રકાર કી સબ્જીયાં લગા કે ઓર બઢિયા ભી કો આનંદ લિયો જા સકે.
0: જી બિલકુલ સહી કહે રહ્યા છો. લેકિન એક માયને થોડો સો આપણને ધ્યાન રાખવો પડે લો કે સબ્જીયાં કો ચુનાવ આપણે કે ભાત કી કરની છે
1: ભાઈ. ઈ મોસમ કા માય દેખો પત્તેદાર ઓર ફલદાર દોની પ્રકાર કી સબ્જી આપા ठीक प्रकाश में लगा सका. हाँ
0: जी
1: पुदीनो धनिया और चौलाई जिसकी पत्तेदार सब्जी कम स्थान पर लाग जाए और तेजी से बढ़े भी के साथ में भिंडी मिर्च बैंगन टमाटर लौकी तोरई करेला खीरा ये भी गमले और जका प्लास्टिक का ग्रो बैग आवे भी के माए ठीक प्रकाश में विकसित हो जाए और बालकनी का माए पर्याप्त धूप आवे तो सेम और लोबिया ये भी जकी बेलदार जकी सब्जी की फसल ही ए आराम से लगाई जा सके.
0: लेकिन महेश भाई चौकी फसल या चौकी पौधा पाना अगर लेनी चाहे तो पहली शर्त कहीं छे उपयुक्त माटी और माटी अगर चौकी छे तो अपन उन्नत किस्म अपने आप प्राप्त होवेली तो इनके लिए माटी तैयार करवा के लिए जो न्यारो पानी छे और आसानी से निकल सके जो की वो पानी अपने एक ठो करनो छे और 40% जो बगीचा की माटी छे उमे 30% चोखी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट और 30% रेत कोकोपीट या पत्ती खाद को आप मिश्रण ले सका छा और यह मिश्रण जो छे पौधा की जड़ों तक पर्याप्त कहीं छे वायु पुगावे छे और नमी को संतुलन भी बनाए रखे छे. गमला के निचला भाग में टूटोड़ा जो टुकड़ा छे कंकड़ छे या फिर नारियल का जो रेशा हुआ छे ना वो भी आप ले सका छा उनमें भर सका छा जिसे कहीं छे कि जल निकास भी बेहतर हुआ छे.
1: और बीज की जगह पर बुआई कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि बीज ने बहुत ज्यादा गहराई कमाए अपा न दबावा इसे करवा सके कि बीज को जो अंकुरण है वो प्रभावित हो सके है और कोई भी बीज ने अपा आकार के हिसाब से 1 से 3 सेंटीमीटर इंच जो है मिट्टी के माये दबा देवा और एक बार हल्की सिंचाई करने के बाद गमले ने देखो आप ये प्रकार की जगह रखा जटे थोड़े से पर्याप्त तो प्रकाश मिले ज्यादा पानी भी पर नहीं गिरे बरसात को. पानी और नमी को कई संतुलन रहना चाहिए
0: वो संतुलन आपने या ध्यान रखता हुआ करना चाहिए कि ऊपरी सतह देखा पहली तो कि पानी देवा कि नहीं देवा. लगातार अगर भीगी हुई माटी छे गीली माटी छे तो वहां की जड़ा का मायने सड़न हो सके छे फफूंद भी लाग सके छे उन पौधा का मायने और तो और जो कीट छे व्याधियां छे और परेशानियां छे वो भी बढ़ सके छे उन पौधा का मायने
1: या समस्या भी बढ़ सके. और कीट की बात कर रहे हैं तो कीट और रोगों से जो है बचाव करना जरूरी है सब्जियों को तो प्रत्येक 15 से 20 दिन का माय वर्मी कंपोस्ट खाद जीवामृत और गोबर की खाद की हल्की मात्रा आप देश का पत्तियों के ऊपर नीम के तेल को छिड़काव करवा से क्या हुआ है कि जिसका कई प्रकार का कीट ही वह नियंत्रित हो जाए और कोई पत्ती पर रोग का लक्षण दिखाई देवे तो बिना आप तुरंत हटा देवा ताकि जो संक्रमण है वो पौधा पर न फैले. बीज बोने के लिए सही गमला का चयन अपन ने करना चाहिए. पत्तेदार की सब्जी बने 6 से 8 इंच गहराई वाला जगह पात्र होने बीमें टमाटर बैंगन और भिंडी के लिए अपा बड़ा जगह पात्र ही बेले इसका. हाँ गमला प्रत्येक

0: पात्र में जल निकास के लिए छिद्र अवश्य होना चाहिए।
1: जी सर, सागे ही खरपतवार भी हटाता रहवा टेम टू टेम। जी सर, की कहीं छे की माटी में जो भी पोषक तत्व आप डाला छे ना, वो सारा तो खरपतवार ही खींच ले छे। तो पौधा के आसपास सूखी पत्तियां हुए, जैविक मल्च की पतली परत अगर आप बिछावा तो माटी की संरचना सुरक्षित मानी जाए छे। और वर्मी जो आप कंपोस्ट छे वो भी ले सका छे। और सागे ही सागे वर्षा को जो बूंद छे, वर्षा को जो सीधो प्रभाव छे, यानी कि बिरखा के मायने ही वो पौधों अगर आप मिला तो उनको प्रभाव कम हो जाए लो।
0: बिल्कुल। तो देखो एक बात आती है कि बोली ज्यादा जगह की जरूरत को नहीं, आप टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, खीरा इस प्रकार और बैंगन इस प्रकार की जिकी सब्जी ही भाई एक सही जगह को चुनाव करके जो की उपयुक्त मिट्टी लेके और ठीक प्रकार से यदि बीजा की बुआई कर देवा
1: जी।
0: और थोड़ी बाकी की सार संभाल भी तो बाद में टाइम पर पानी देना, थोड़ो बाना धूप मिले और जगह कीट रोग ही बाको प्रकोप से सब्जी ने बचावा तो ताजा और बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी आपने खावा में मिलेगी
1: जी।
0: और घर की सब्जी तो घर की हो है।
1: वह तो कोठे जावे ही को ना बात। और वो सब्जियां तो देखो आपने नुकसान भी नहीं करेली कदे भी, तो आप ये कदम जरूर उठा सका छा कि घर में सब्जियां लगावा और उन्नत जो अपनी सब्जियां छे, खाद्य पदार्थ छे, उनको आप सेवन करा जिससे कि आप भी निरोगी रहवा और आपनी जो प्रकृति छे उन्हें भी निरोग रहवा।
0: आप लोगों को बागवानी का मैं बात ये भी है कि जब आप इस प्रकार की क्रिया करता रहे बागवानी की तो बीच में आपको मन भी लागेडो रहे और सब्जियां में देखो रोजना का कतरा अपना पीसा भी बच जाए
1: जी सा।
0: तो अब देखो चौको सो लोगी तो आप सुनाओ कार्यक्रम का मैं
1: जी। वह तो बनाई है कि बढ़िया सी जानकारी आप दी टेम सारू।

0: वासा बहुत ही चोको लोक गीत पानी ने चाली मोरू भाई सीमा मिश्रा और हरीश मोहिल की आवाज में बहुत ही चोको सो लोक गीत आप सुनाया।
1: अब महेश भाई आपने एक जिम्मेवारी सौंपू।
0: बिल्कुल
1: जानकारी थे दिलाओ संरक्षित खेती से सब्जियां की खेती में बेहतर कमाई आपा किन भांति ले सका। डॉक्टर गुलाब चौधरी आपनी बाट अडीगरी छे तो लेवा आसू जानकारी।
0: बिल्कुल किसान साथियों आज अपने बीच मौजूद हैं डॉक्टर गुलाब चौधरी तो विशेषज्ञ उद्यान विज्ञान और आपसे आज बातचीत कर से जानकारी ले से कि प्रकार से सब्जियों की संरक्षित खेती करके आप बेहतर कमाई कर सका तो आपसे बातचीत करा और जानकारी लेवा। तो डॉक्टर गुलाब चौधरी बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। राम राम।
2: राम राम।
0: तो डॉक्टर गुलाब जी देखो सब्जियों की जो संरक्षित खेती की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहली जो माँ का किसान भाई ही माने यह बताओ कि जो संरक्षित खेती है यह कहीं हुआ है।
2: संरक्षित खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जहाँ फसलें ग्रीन हाउस पोली हाउस या नेट हाउस जैसी सुरक्षात्मक संरचनाओं में उगाई जाती है ताकि उन्हें प्रतिकूल मौसम कीटों और बीमारियों से बचाया जा सके। यह तापमान आर्द्रता और प्रकाश जैसी विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों को नियंत्रित करने की सुविधा देती है जिससे साल भर खेती संभव होती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है।
0: यह तो बात हुई कि संरक्षित खेती कहीं हुआ है, अब यह बताओ कि जो संरक्षित खेती है एक ही आवश्यकता ही अपने क्यों है।
2: देखो संरक्षित खेती की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हरित क्रांति के बाद खाद्य और पोषण की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादन की गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया गया है। जब पौधों की वृद्धि के लिए परिस्थितियों को उचित रूप से नियंत्रित किया जाता है तो इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में देश में लगभग 20.49 करोड़ टन सब्जियों का उत्पादन हो रहा है जबकि बढ़ती जनसंख्या शहरीकरण औद्योगिकीकरण व घटती जमीन और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज 21.2 करोड़ टन सब्जियों के उत्पादन की जरूरत है। सब्जियों की संरक्षित खेती की आवश्यकता का एक बड़ा कारण यह भी है कि पानी की कमी या मौसम की बदलती शर्तों के कारण किसानों की मेहनत को कई बार नुकसान हो जाता है क्योंकि अपने राज्य में तापमान 5 से लेकर 48 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च स्तर तक रहता है। इसलिए खेती को लेकर एक धारणा है कि लागत के मुकाबले इसमें मुनाफा कम होता है। कई इलाकों में फसलों की कमी की खबरें आती रहती है लेकिन इस समस्या

0: का मूल कारण प्रबंधन या परंपरागत खेती है। कुछ अलग करने की सोच न केवल उत्पादन बढ़ा सकती है बल्कि कई गुना मुनाफे के रूप में भी हो सकती है। हालांकि इसे करने के लिए परंपरागत खेती से ज्यादा खर्च करना होगा। नई तकनीकों जैसे कि संरक्षित खेती को अपनाना जरूरी है। इसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्च, खीरा, ब्रोकली, फूलगोभी है आदि कई प्रकार की ऐसी सब्जियां हैं जो कीटों के प्रति, फफूंद जैसे जीवाणु है, विषाणु है, इनके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। अगर इन पर नियंत्रण न किया जाए तो ये कीट और रोग फसलों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं या नष्ट भी कर सकते हैं, जिससे उपज में भारी नुकसान और उपज की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। दूसरी ओर खरपतवार पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए सब्जियों की फसलों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये फसल की पैदावार कम कर सकते हैं और जो कटाई है उसमें भी ये कठिनाई पैदा करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप यह तो बताया कि भी जो संरक्षित खेती है आ वर्तमान की आवश्यकता है, पर लाभ की अगर बात करें तो किसान भाई के लिए संरक्षित खेती का कई लाभ है।
0: देखो, संरक्षित खेती के लाभ ही लाभ है। संरक्षित खेती में नियंत्रित वातावरण के तहत मूल्यवान फसलों की खेती की जाती है। इस तकनीक का लाभ महंगा हो सकता है लेकिन इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। ग्रीन हाउस, नवीनतम तकनीक से लेस पोली हाउस, प्लास्टिक लो टनल, प्लास्टिक हाई टनल, शेडनेट हाउस में रोशनी आदि ही अंदर आती है जो गर्मी और ठंड के मौसम में फसलों के लिए उत्तम रहती है, जबकि पोली हाउस सभी सीजन में फसलों के लिए फायदेमंद रहता है क्योंकि इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, पर्यावरणीय जो परिस्थितियां है वो पूरी तरीके से नियंत्रित रहती है। ग्रीन हाउस, पोली हाउस, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स में सही जल का प्रबंधन अपन कर सकते हैं, पोषक तत्वों का प्रबंधन भी अपन कर सकते हैं, उर्वरक जो है उसको भी अपन फर्टिकेशन के थ्रू दे सकते हैं और बहुत कम जगह में बहुत अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा मल्टी लेयर तकनीक जो बहुत ही शानदार तकनीक है, जैसे टमाटर और खीरे के नीचे अगर अपन गोभी वर्गीय सब्जियों को उगाकर परंपरागत तकनीक की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक उपज ले सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जो अपना किसान भाई है वह सब्जियों की खेती ये वास्ते कर रहे हैं कि सब्जी वहाँ के लिए एक जो है कि रोजाना आमदनी का साधन है कि सब्जियों की तुड़ाई करके और फिर बाजार में जाके बेच के वह एक लगातार आमदनी कर सके।
0: जी,
1: पर संरक्षित खेती की आप बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में किसान भाई कौन कौन सी सब्जियों को चयन कर सके हैं?
0: देखो, संरक्षित खेती के लिए सब्जियों का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। अपने को उन सब्जियों का चयन करना चाहिए जिनकी बाजार में नियमित मांग हो, खासकर ऑफ सीजन के दौरान, जैसे टमाटर है, खीरा है, शिमला मिर्च है, बैंगन है और करेला है। ये उच्च मूल्य वाली सब्जियां होती है और इनके हाई रेट अपने को बाजार में पूरे साल भर मिलते रहते हैं। तो बेमौसम में जो सब्जियां अपन उगा सकते हैं जो मैंने अभी बताई, उन्हीं का अपने को चयन करना है क्योंकि ये ग्रीन हाउस और पोली हाउस में बेहतर इनका प्रदर्शन रहता है और इन सब्जियों में रोग और कीट लगने से बाहरी वातावरण में इसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए अगर अपन इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करते हैं तो काफी हद तक इस नुकसान से बच के और अपन बेहतर कमाई पा सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप बताया कि जो संरक्षित खेती है कमाए अपने कौन कौन सी सब्जियों को चयन की प्रकार से करना चाहिए। संरक्षित खेती कमाए यह भी बताओ कि कौन कौन सी संरचना हो रही है?
0: देखो, संरक्षित खेती में बहुत सारी संरचनाएं होती है और अलग अलग किसान अलग अलग संरचनाओं में खेती करते हैं। वो स्थान विशेष को लेकर भी अलग अलग संरचनाएं होती है, जलवायु की परिस्थितियों को लेकर भी अलग अलग संरचनाएं होती है। अगर मैं बात करूँ तो जैसे पहला है वॉकिंग टनल, इसे छोटे किसानों का ग्रीन हाउस भी कहते हैं। ये मूलतः चाप के आकार के एक सरल संरचना होती है। 200 माइक्रोन की मोटाई वाली जो प्लास्टिक को आधे इंच के जीआई पाइप पर खड़ा किया जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 से 2.5 मीटर और चौड़ाई लगभग 4 मीटर होती है। इसमें शिमला मिर्च और खरबूजे जैसी जो कम ऊंचाई वाली सब्जियां हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है, इनके लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है। इसका उपयोग नर्सरी में पौधे उगाने और रोपण सामग्री के अनुकूलन के लिए भी किया जा सकता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक होता है प्लास्टिक लो टनल, इसे पंक्ति कवर प्लास्टिक लो टनल भी कहते हैं। लो टनल का उपयोग खुले मैदान की स्थिति में पौधों को कवर करने के लिए किया जाता है, जहां 30 से 50 माइक्रोन की पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म 50 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मीटर चौड़ाई के फ्रेम पर फैली हुई होती है। दिन के समय प्रकाश प्राप्त करने और रात के समय में फसलों को ठंड से बचाने के लिए अधिकांशतः उपयोग में ली जाती है। ये कद्दू वर्गीय सब्जियां जो 2 मौसम में उगाई जाती है, एक होती है इनकी जायद सीजन, एक होती है इनकी खरीफ सीजन। जायद सीजन में फरवरी मार्च में किसान भाई है वो अपने खेतों में इन सब्जियों को लगाते हैं। जब ये बाजार में आती है तब उनकी मार्केट की प्राइस है वो कम रहती है क्योंकि सभी किसान भाई उसी समय लगाते हैं। अगर अपन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के, जैसे प्लास्टिक मल्च और इसके साथ साथ में लोटन लेके अगर इसी सब्जी को अपन दिसंबर या फिर जनवरी

0: की स्टार्टिंग में लगाते हैं तो अपने को मार्च अप्रैल तक फ्रूटिंग अपनी होने लगती है और बाजार में अपने फ्रूट आने लगते हैं, जिससे बहुत ही शानदार अपने को अच्छी मार्केट प्राइस अपने को मिल सकती है। क्योंकि जब अपन भी देखते हैं, अगर प्रैक्टिकली अपन सोचते हैं, तो कोई भी सब्जी अगर पहली बार बाजार में आती है तो उसका रेट काफी अच्छा होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेट हाउस दो प्रकार के होते हैं। एक तो छाया के लिए होता है, एक कीटों से बचाने के लिए होता है। जो छाया जाल होता है उसका जो उपयोग है वो अपन सूर्य की रोशनी सीधे मतलब अपनी फसलों पर ना पड़े, जिससे कि रोशनी से जो प्रकाश है उससे अगर कोई फसलें झुलसा रही है, मुरझा रही है, तो उस नुकसान से अपन बच सकते हैं। इनका रंग अलग अलग हो सकता है, जैसे काला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है। दूसरा जो जाल होता है वो कीटरोधी जाल होता है। इसके नियंत्रण के लिए अपन 25 से 60 मेस वाले जो कीटरोधी जाल का उपयोग किया जाता है, 40 और उससे अधिक मेस वाले जाल अधिकांश कीटों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग नियंत्रित परागण विधि के लिए भी किया जाता है। नेट हाउस में बेल मौसम टमाटर की खेती भी इसमें की जा सकती है। टमाटर की नेट हाउस खेती से जनवरी के अंतिम सप्ताह से जून के पहले सप्ताह तक टमाटर की उपलब्धता कि जो अवधि है उसको अपन बढ़ा सकते हैं और ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा जो चौथा है वो है मल्चिंग। अधिकतर जो किसान भाई है वो मल्चिंग को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधे के आधार के चारों ओर किसी भी आवरण सामग्री से मिट्टी की सतह को ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया नमी का संरक्षण करती है, खरपतवारों का नियंत्रण करती है, मिट्टी की जो संरचना है उसमें सुधार करती है और जो जड़ क्षेत्र है उसमें गैसों का आदान प्रदान बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें होता है। साथ ही यह फलों को मिट्टी के संपर्क से बचाता है, जिससे अपने जो फल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी अपने को प्राप्त हो सकती है। जैसे कि अपन कभी कभी देखते हैं कि जो कद्दू वर्गीय जैसे तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है या फिर जो काकड़िया है, वो अपन फ्रूट बाजार से लेके आते हैं तो उसमें एक निशान बना हुआ दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो जो फल है वो जमीन के टच, मिट्टी के टच होते हैं, इसलिए उनकी क्वालिटी रिड्यूस होती है। इसके अलावा ये जो पीले रंग की और सिल्वर रंग की अगर अपन पॉलीथीन शीट काम में लेते हैं तो वो इसलिए लेते हैं कि सफेद मक्खी और जो एफिड्स है उससे अपन उसको दूर भगा सकते हैं, उनका नियंत्रण अपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो काली प्लास्टिक मल्च होती है वो अपनी अपारदर्शिता के कारण बहुत ही लोकप्रिय है। इसके अलावा जो सफेद कलर की जो मल्च शीट होती है वो मतलब कि अच्छे प्रोडक्शन के लिए और प्रकाश के मतलब कि अच्छे प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। इसके अलावा एक ग्रीन हाउस होता है जिसको पॉली हाउस भी अपन बोल सकते हैं। ये बहुत ही महंगा थोड़ा होता है, इसलिए हर एक किसान भाई इसको अडॉप्ट करने से पहले सोचता है। ये एक आच्छादित संरचना या ढांचा होती है। ये पारदर्शी या पारभाषी पदार्थ से ढका होता है। इसमें फसलें आंशिक या पूर्णतः नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थितियों में उगाई जाती है, इसीलिए इसमें पूरे साल भर अपन खेती कर सकते हैं। पौधों की इसमें बेहतर वृद्धि होती है, उपज के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिति प्रदान करती है। ग्रीन हाउस इतने बड़े होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसमें आसानी से जा सकता है, आ सकता है। जो भी कृषि क्रियाएं हैं वो उसमें वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो और भी होता है, जैसे मिट्टी की खाइयां। ये मतलब कि अत्यधिक सर्दियों की स्थिति के दौरान सब्जियां उगाने के लिए सबसे सस्ता ढांचा मतलब मिट्टी की खाइयां खोदकर बनाया जा सकता है। इन्हें भूमिगत सौर ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। आमतौर पर इनकी चौड़ाई 5 से 6 मीटर और गहराई लगभग 2 से 3 मीटर होती है। इष्टतम तापमान बनाए रखने के लिए सूर्य और मिट्टी दोनों की गर्मी का उपयोग किया जाता है। यह ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहुत ही अधिक लोकप्रिय है। इसके अलावा जो लास्ट वो है होटवेड। ये होटवेड गोबर के अपघटन से उत्पन्न ऊष्मा के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिसका उपयोग शून्य से नीचे के तापमान में भी सब्जियां उगाने में किया जा सकता है। इन्हें जमीन पर भूसे और आधे सड़े हुए गोबर की परतों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। ये बेमौसम नर्सरी उगाने के लिए भी उपयुक्त है।
1: डॉक्टर साहब, जो संरक्षित खेती है वर्तमान की आवश्यकता है और कई लाभ भी हुई का, पर आप बात कर लिया चुनौती की, तो संरक्षित खेती के माय किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी प्रमुख चुनौती है?
0: देखो, संरक्षित खेती में बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन मुख्य चुनौती ये है कि इसमें जो शुरुआती जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा होता है और किसान भाई इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो जागरूकता है उसकी काफी ज्यादा कमी है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जैसे कि बस्सी है उसको मिनी इसराइल के नाम से जानने लगे हैं, लेकिन वहां पे एक किसान गया और वो इसराइल में मतलब पोली हाउस देख के आए और वो आके लगाए, उसको प्रॉफिट हुआ, तो बाकी सभी किसान भाइयों ने अडॉप्ट किया। लेकिन बहुत सी अपने राज्य में ऐसी जगह है जहां पे एक भी पोली हाउस नहीं है या फिर ना के बराबर पोली हाउस है, तो किसान भाई की आदत होती है कि वो देख के ही अडॉप्ट करते हैं किसी भी चीज को, तो जागरूकता की कमी होने के कारण वो नहीं बना पाते हैं और बहुत सारी संरचनाओं के बारे में उनको

0: सकती है कि इस संरचना को अपना के अपन इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा यह भी है कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, लेकिन किसान भाइयों का इसको नॉलेज नहीं होता है कि इस सब्सिडी का फायदा कैसे ले सकते हैं और कौन सी संरचना पे कितनी सब्सिडी है। किसान भाइयों को मतलब सब्सिडी जो आदान है उसके बारे में पूरी जागरूकता होनी चाहिए कि अवेयर होने चाहिए वो कि कौन सी संरचना पे कितनी सब्सिडी मिलती है और क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, जो संरक्षित खेती की आप बात कर रहे हैं, तो किसान भाई के लिए जो सरकार है वह संरक्षित खेती के लिए कई प्रयास कर रही है।
0: देखो, संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए जो अपनी राज्य सरकार है वो जो संरचनाएं हैं उस पे अलग अलग संरचना पे अलग अलग सब्सिडी दे रहे हैं। अगर बात करें ग्रीन हाउस या शेडनेट हाउस की, तो इस पे निर्माण हेतु निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा इस एम्पलन फर्म्स की प्रस्तुत दरों में जो भी कम हो 50% अनुदान दे हैं। इसके अलावा जो लघु सीमांत होते हैं स्मॉल मार्जिनल या फिर अनुसूचित SC और ST के जो कृषक होते हैं उसको 20% अधिक अनुदान दे हैं। बात करते हैं अगर अपन प्लास्टिक मल्च की, तो प्लास्टिक मल्च पे अधिकतम 1 हेक्टेयर के लिए 20,000 या फिर जो भी लागत है उसका 50% जो भी कम हो वो सरकार मतलब किसान भाइयों को देती है और अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए वो मल्च के ऊपर सब्सिडी देती है। बात करें प्लास्टिक टनल की, तो प्लास्टिक टनल के लिए विभाग द्वारा प्लास्टिक टनल पर अनुमानित लागत का 80 रूपये प्रति वर्ग मीटर या फिर अनुबंधित फर्म की दर दोनों में से जो भी कम हो उसका 50% देती है। इसके अलावा जो एंटी बर्ड नेट होता है उसके लिए भी 50% का सब्सिडी देती है। और इसके अलावा संरक्षित खेती में जो फसलें अपन लगाते हैं, जो प्लांटिंग मटेरियल होता है गवर्नमेंट उसके ऊपर भी सब्सिडी देती है। तो किसान भाइयों का इस सब्सिडी का अधिक से अधिक फायदा लेना है और मैं निवेदन करूंगी सभी किसान भाइयों से कि संरक्षित खेती अपना के वो ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं, उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव है जिनको अपनाकर अपन अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत सारे किसानों के लिए अपन मोटिवेटर बन सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया जानकारी साहब। तो देखो किसान भैया, संरक्षित खेती कहीं हो है, कहीं इका फायदा ही क्यों आवश्यक है और की प्रकार से आप कर सका, ये विषय पर बहुत चौखी जानकारी दिया डॉक्टर गुलाब चौधरी, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यान विज्ञान से आप आया और अति चौखी जानकारी किसान भाई ने दी, इसके वास्ते डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और धन्यवाद महेश भाई आपको भी कि संरक्षित खेती से सब्जियां की खेती में बेहतर कमाई आपा किण भांति पा सका छा और खुद की आर्थिक स्थिति ने चौकी बना सका छा, और जानकारी थे दिलाया डॉक्टर गुलाब चौधरी जी से।
1: अब चलता चलता जयपुर के मौसम को हाल बता देवा, तो पिछले 24 घंटे में जयपुर को न्यूनतम तापमान रहो 28 डिग्री, अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस। अगले 24 घंटे में जयपुर को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और थोड़ा सा बिजली कड़कबा के साथ में बारिश भी हो सका है, यह है मौसम की संभावना। अब खेती बाड़ी को टेम पूरा हो चले तो महेश भाई ने और
2: अदिति ने देव आज्ञा
1: करा सबने
2: राम राम सा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात के 8 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का पहला गीत सुनिए, फिल्म सुरमा से। आवाज है दिलजीत दोसांझ की, बोल है गुलजार के, और संगीत दिया है शंकर महादेवन और एहसान नूरा।

फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए सिंघम फिल्म से, आवाजें हैं श्रेया घोषाल और अजय की, वो है स्वानंद किरकिरे की और संगीत दिया

लगीचुनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से। आवाजें हैं अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मानी की। संगीत दिया विशाल शेखर ने एवं बोल है विशाल के।

फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए रवैया बस्तविया से। आवाज है आतिफ असलम एवं श्रेया घोषाल की, बोल है प्रिया पांचाल की और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

बोल थे इरशाद कामिल के और संगीत था एआर रहमान का। अब फिल्म संगीत का अंतिम गीत सुनिए फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की, बोल इरशाद कामिल के और संगीत विशाल एवं शेखर का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। रात के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्क्रीन। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आज मेरे साथ हैं
1: प्रशांत कुमार। नमस्कार।
0: स्पोर्ट्स कैंप के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर। अब स्पोर्ट्स कैंप के साथ खेल की हर बात। तो प्रशांत, शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ।
1: जी धर्मेंद्र, फीफा विश्व कप में फ्रांस, मैक्सिको और नॉर्वे की टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आज इंग्लैंड का सामना कांगो से और बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच 2020 क्रिकेट मैच के सीरीज का पहला मैच आज चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में

0: ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में जगह बनाई। कल दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्याना सवालेंका महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंची। पुरुष वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सेनन का दूसरे दौर का मुकाबला जारी। और बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पीबी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। भारत का एक पदक पक्का।
1: तो फीफा फुटबॉल विश्व कप का रोमांच सबके सर चढ़कर मूल रहा है और राउंड ऑफ 32 के मैच आज भी खेले जाएंगे। रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। फीफा विश्व कप की पिछली बार की उपविजेता फ्रांस की टीम स्वीडन को हराकर इस बार राउंड

0: चैंपियनशिप भूमित की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची, भारत का एक पदक पक्का।
1: तो फीफा फुटबॉल विश्व कप का रोमांच सबके सर चढ़कर मूल रहा है और राउंड ऑफ 32 के मैच आज भी खेले जाएंगे। रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे, देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। फीफा विश्व कप की पिछली बार की उपविजेता फ्रांस की टीम स्वीडन को हराकर इस बार राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई है। मैक्सिको ने इक्वाडोर पर जीत के साथ 40 साल बाद नॉकआउट का मैच जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं नॉर्वे आइवरी कोस्ट को हराकर पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। एक रिपोर्ट।
2: न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी में स्वीडन पर फ्रांस की 3-0 की जीत में एक बार फिर किलियन एम्बापे सबसे बड़े स्टार साबित हुए। विश्व कप में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए एम्बापे ने 45वें मिनट में अलिसो के पास को गोल में बदल कर टीम का खाता खोला। उसके बाद पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 53वें मिनट में बैडल बारकोवा ने टीम के लिए दूसरा गोल किया। इसके 21 मिनट बाद फ्रांस के लिए तीसरा गोल फिर एम्बापे के जरिए आया और टीम की जीत लगभग पक्की हो गई।
3: It certainly would have been, and the technical ability that you need to execute this is liquid gold, Michael Olise. Absolutely wonderful to watch. And Mbappe! Star after French star. How they twinkle. The love here is for their leader. Didier Deschamps at a time of personal loss. Enveloped by the players who looked at him.
2: इस गोल के साथ ही टूर्नामेंट में एम्बाप्पे के 6 गोल हो गए हैं। उन्होंने इस एडिशन में टॉप गोल स्कोरर की लिस्ट में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी की बराबरी कर ली है। साथ ही वे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे अधिक 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एम्बाप्पे ने वर्ल्ड कप करियर में 18वां गोल किया और मेसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 1 गोल पीछे है। अब फ्रांस का सामना पैराग्वे से 5 जुलाई को होगा। उधर नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर विश्व कप इतिहास में पहली बार नॉकआउट मुकाबला जीता। एक समय मुकाबला 1-1 की बराबरी पर था, लेकिन नॉर्वे के एरलिंग हॉलैंड ने 86वें मिनट में इस विश्व कप का अपना 5वां गोल कर टीम की जीत तय कर दी।
3: Absolutely sensational goal. So they've replied to one with one of their own. Oh, a lovely ball for Berg, for Haaland. He rolled it into an empty net. He gets all types of goals, but they all count the same. And on the big stage, this is a mighty one.
2: मेजबान मैक्सिको भी इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। 1986 में अपने घर में खेले गए विश्व कप में बुल्गारिया को हराने के बाद पहली बार जब मैक्सिको ने नॉकआउट चरण का कोई मुकाबला जीता है। जूलियन मिनिक्स और राउल जिमनेज ने विजेता टीम के लिए गोल किया।
3: Cote d'Ivoire, gallant effort. They're out by the narrowest of margins. And Norway will play Brazil in the round of 16.
2: हम आपको बता दें कि मेक्सिको की टीम 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 और 2018 विश्व कप में लगातार 7 नॉकआउट मुकाबले हार गई थी। 2022 कतर विश्व कप में टीम ग्रुप चरण में ही बाहर हो गई थी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स टाइम।
1: प्रशांत, जब फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट की बात भी क्यों करना कर रहे हैं?
4: जी धर्मेंद्र, बिल्कुल। एशिया के सबसे पुराने डोरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में इस साल 24 टीम हिस्सा लेंगी। इनमें से 7 टीमें टूर्नामेंट में पदार्पण कर रही हैं। प्रतियोगिता के मुकाबले 25 जुलाई से 23 अगस्त तक 5 शहरों में खेले जाएंगे।
5: दुनिया के तीसरे सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज कोलकाता में होगा, फिर 4 सप्ताह तक टीमों के बीच मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में भी खेले जाएंगे। वर्ष 1888 में शुरू हुए डोरंट कप का फाइनल कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगण में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में एक बार फिर इंडियन सुपर लीग क्लब, आई लीग टीमें, सेना की टीमें, उभरती हुई घरेलू टीमें और विदेशी टीमें एक साथ खेलेंगी। साथ नई टीम में श्रीलंका सशस्त्र बलों की डिफेंडर्स एफसी और मेघालय

0: स्पिन नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब शामिल हैं। भारतीय फुटबॉल का गढ़ कोलकाता एक बार फिर टूर्नामेंट का मुख्य केंद्र होगा, जहां विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन और किशोर भारती क्रीड़ांगन में दो ग्रुप के मैच, उद्घाटन मैच, दो क्वार्टर फाइनल और एक सेमीफाइनल तथा फाइनल खेला जाएगा। ये शहर रिकॉर्ड 17 बार की चैंपियन मोहन बागान सुपर जायंट, 16 बार की विजेता ईस्ट बंगाल FC, मोहम्मदन SC, साउथ यूनाइटेड FC, CISF, भारतीय सेना और नई टीम बागपत FC और समलेश्वरी स्पोर्टिंग की मेजबानी करेगा। रांची पहली बार डोरंड कप की मेजबानी करेगा, जहां बिरसा मुंडा स्टेडियम में 26 जुलाई से 16 अगस्त तक लीग मुकाबले और एक क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाना है। ये शहर जमशेदपुर FC, स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, भारतीय वायुसेना और डिफेंडर्स FC की मेजबानी करेगा। उधर इम्फाल का खुमान लंपक स्टेडियम 28 जुलाई से 17 अगस्त तक लीग मुकाबलों और एक क्वार्टर फाइनल की मेजबानी करेगा। इस ग्रुप में स्थानीय क्लब TRAU FC और निरोका FC, भारतीय नौसेना और पदार्पण कर रही FC रेंगडाई शामिल हैं। शिलोंग के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 जुलाई से 20 अगस्त तक लीग मुकाबलों के अलावा एक सेमीफाइनल मैच होगा। इस मैदान पर शिलोंग लाजोंग FC, नोंगसे SS एंड CC, लैंगसमिंग FC और पदार्पण कर रहा मुंबई FC खेलेगा। गुवाहाटी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम 1 से 13 अगस्त तक लीग चरण के मुकाबलों की मेजबानी करेगा। मौजूदा चैंपियन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC इस ग्रुप की मुख्य टीम है, जिसमें FC1 बोडोलैंड FC और कार्बी आंगलांग मॉर्निंग स्टार FC भी शामिल है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्सकास्ट।
1: दोस्तों, फुटबॉल की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 मैच के सीरीज की शुरुआत आज से चेस्टर ले स्ट्रीट में होने जा रही है। आयरलैंड के हाथों पिछली सीरीज में 2-0 की हार के बाद अब हर एक क्रिकेट प्रेमी के दिल में यही सवाल है कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड की तेज उछाल भरी पिचों पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी और क्या पिछली सीरीज में बेंच पर इंतजार करते रह गए वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा। सुनिए ये रिपोर्ट।
2: श्रृंखला एक, सवाल अनेक। सबसे बड़ा सवाल ये कि आयरलैंड के हाथों करारी शिकस्त के बाद क्या वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में मौका मिलेगा? क्या पिछली सीरीज में संजू सैमसन की दोहरी विफलता उन्हें बाहर बैठाने और सूर्यवंशी को मौका देने का बड़ा कारण बन सकती है? टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर इस बारे में कुछ साफ साफ तो नहीं कहते, लेकिन वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पैक करने की बात कहकर काफी कुछ इशारा दे जाते हैं।
3: देखिए, अभी हर एक इंडिविजुअल जो जो टीम में खेल रहे सबने परफॉर्मेंस किया है, ऐसा नहीं कि एक अकेले इंडिविजुअल ने किया है, बट हर एक को अपॉर्चुनिटी और एक तरीके का सिक्योर

0: तरीके का आइडिया भी है कि कैसा खेले T20 और कंटिन्यूसली वो फॉर्मेट के एक तरीके के मेन पिलर्स रहे हैं, तो फिर बैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: सीरीज के शुरुआत के पहले भारत के सहायक कोच रयान टेन डोशी ने इतना तो कह दिया है कि सूर्यवंशी को भी किसी अन्य क्रिकेटर की तरह अंतिम एकादश में जगह पाने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा।
2: He's absolutely ready to play international cricket, there's no doubt about that. I think it's not a question to say, you know, you've Sanju Samson out, a guy who, went a long way to winning India World Cup 3 months ago, a guy who's had a fairly good RPL. It's important in terms of giving players confidence and the message we're sending to players. We want to give guys a long run in the team. So, as ready as Vaibhav is and as excited we are all and you are all to see him play.
1: सवाल तो ये भी है कि पिछली सीरीज में बेअसर दिखी भारतीय बल्लेबाजी तेज और उछाल वाली मुश्किल विकेटों पर मेजबान टीम को कितनी चुनौती दे पाएगी। इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, साकिब महमूद और सोनी बेकर जैसे बहुत तेज गति वाले गेंदबाज हैं, साथ ही आदिल रशीद और रेहान अहमद जैसे चतुर स्पिनर भी हैं। वैसे भी रिवर्स साइड ग्राउंड पर गेंदबाजी का दबदबा रहा है, यहाँ न्यूनतम स्कोर 138 और उच्चतम स्कोर 195 है। जाहिर है सीरीज काफी कठिन रहने वाली है, इस बात को कप्तान श्रेयस अय्यर भी मानते हैं।
0: All of us, we have played in England before. We know how the wickets are. Usually we see it on TV as well. Belfast, we played after so many years. It's not a reason, but I'm just saying that turning up over there, getting acclimatized to the wicket, to the conditions, we fell a bit short in terms of reading the outfield and getting accustomed to the conditions over there. And over here also, the dimensions are pretty much similar, but the ground is flat and you feel the vibe, you feel the stadium vibe, the crowd would be intense as well. We've played in such conditions, such situations before.

0: उधर इंग्लैंड की बल्लेबाजी में कप्तान हैरी ब्रूक, जोस बटलर, जॉर्डन कॉक्स, जैकब बेथिल, विल जैक, फिल सॉल्ट और टॉम बेंटन जैसे नाम हैं। आयरलैंड के खिलाफ ट्रैक से उतरी दिखी भारतीय गेंदबाजी की अब और कड़ी परीक्षा होने वाली है। तेज गेंदबाजों के साथ साथ अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर्स भी कसौटी पर कसे जाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि आयरलैंड से हार के बाद हतोत्साहित टीम ने कप्तान श्रेयस को नया जोश और जीतने का जुनून भरना ही होगा, तभी इस कठिन सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन टीम अपना दबदबा बना पाएगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और बात टी20 क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। आईसीसी ने टी20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ईशान ने लगभग एक साल से नंबर वन की कुर्सी पर काबिज अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर पहुंच गए। साहिबजादा फरहान तीसरे, फिल शॉर्ट चौथे, पाथुम निसंगा पांचवें और तिलक वर्मा छठे स्थान पर हैं। वहीं बात अब महिला टी20 क्रिकेट पर। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच लंदन के किंगस्टन ओवल में भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में 126 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया।
2: और प्रशांत, बैंकॉक में एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का एक पदक पक्का हो गया है। प्रतियोगिता में पीवी अभिनंद और दिव्यांशी भौमिक की भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त अंडर 19 मिक्स जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चीन के यिरेंग तांग और यी जियांग पर 11-9, 11-6, 11-7 की शानदार जीत के साथ अंतिम चार में जगह बनाई।
1: और अब बात विंबलडन पर भी कर लेते हैं। धर्मेंद्र, लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी इटली के यानिक शेनर का मुकाबला पुर्तगाल के नीनो बोर्गेस के साथ चल रहा है। सातवीं वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच आज देर शाम दूसरे दौर में मिस्र के स्टाफिनोस सिटसिपास के साथ खेलेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में टॉप सीड सबालेंका तीसरे राउंड में पहुंच गई है। नौवीं वरीयता प्राप्त जापान की नाओमी ओसाका ने भी तीसरे दौर में जगह बना ली है।
2: और उधर भारत के बेलावन संथिल कुमार और तन्वी खन्ना पीएसए चैलेंजर टूर मुंबई स्क्वाश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बैडमिंटन से एक खबर है प्रशांत, जापान के यात्सू शिरो में भारत के ध्यान संतोष ने आज उलट फेर करते हुए थाईलैंड के छठी वरीयता प्राप्त पुन्नातात प्रेम पुंगवोंग को पराजित किया। संतोष ने लड़कों के सिंगल्स के पहले दौर में 21-17, 21-18 से जीत हासिल की।
1: और धर्मेंद्र, बॉक्सिंग से भी एक खबर आ रही है। भारत अंडर 19 और अंडर 23 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और उभरते खिलाड़ियों का मिलाजुला दल उतारेगा। यह प्रतियोगिता 3 से 16 जुलाई के बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित होगी। मौजूदा एशियन चैंपियन विश्वनाथ सुरेश और वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप गोल्ड मेडलिस्ट चंद्रिका पुजारी इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में भारत की अगुवाई करेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और धर्मेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कॉन्गो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो

0: सरकारी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, बीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसंख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन

0: प्रशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई

0: निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को

0: जिसको कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से निनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: कार्यक्रम आपके लिए।

0: संघर्ष फिल्म का ही गाना आप सुन रहे थे, सोनू निगम का गाया हुआ। समीर ने गीत लिखा था और जतिन ललित ने संगीत से संवारा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब सुनते हैं आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना साया फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी

आइए अब आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना, जिसे लिखा है गुलजार ने, शुरू में पिरोया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं, जिन्हें जगाया है सी अर्जुन।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई, आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है

0: ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम। केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का। संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल एफएम रेंज 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत लिया है फिल्म पलकों की छांव में से, आवाज किशोर कुमार, आशा भोसले और गुलजार की।
1: चल गुड्डी चल, पक्के जामुन टपके ये, आंगन की रस्सी से माने कपड़े खोले और तंदूर पे लाके टीन की चादर डाली। सारे दिन के सूखे पापड़ लच्छी ने लिपटाई चादर, बच गई रब्बा किया कराया धुल जाना था। खैरू ने खेत की सूखी मिट्टी झुरियों वाले हाथ में लेकर भीगी भीगी आंखों से फिर ऊपर देखा, झूम के फिर उठे हैं बादल।

आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म काली घटा से, आवाज मोहम्मद रफी की। गीत में बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

ये सुन रहे हैं आप फिल्म सीमा से, आवाज मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी की। गीत में बोल हैं शैलेंद्र के और धुन शंकर जयकिशन की।

ये सुन रहे थे आप फिल्म सीमा से मोहम्मद रफी और सुमन कल्याण परी की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म पत्थर के सनम से, आवाज मुकेश और लता मंगेशकर की। गीत में बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी की और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

ये गीत सुन रहे थे आप मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पत्थर के सनम से। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में।

ये गीत सुन रहे हैं आप लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी से। गीत में बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

ये सुन रहे थे आप फिल्म कश्मीर की कली से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। गीत में बोल थे एसएच बिहारी के और धुन थी ओपी नैयर की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म पराया धन से, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत में बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन आरडी बर्मन की।

ये गीत सुन रहे हैं आप फिल्म मेरे हमसफर से, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की, गीत में बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

0: ये था आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत का अंतिम गीत जिसे आप सुन रहे थे फिल्म मेरे हम सफर से। आवाज थी लता मंगेशकर और मुकेश की। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अपनी ही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है। आइए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रूपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च

0: आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मोलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये यहीं संपन्न हुए। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। अगली सभा हमारी कल सुबह प्रातः 5:51 पर आरंभ होगी। तब तक दीजिए इजाजत रेडियो होस्ट शबाना परवीन को। शुभ रात्रि, शुभ खैर, जय हिंद।